0: वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है, वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, बढ़ते वैश्विक तनाव के दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के

मंत्री प्रिंस अब्दुलमतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की थी। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का रिश्ता कोई सरहद नहीं जानता, और जो एक बार दिल से जुड़ जाए वो फिर कभी नहीं बिछड़ता। नमस्कार, मैं श्रुति पुरी
1: और रश्मि कुकरेती आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में,
0: जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर, और हमारे डिजिटल परिवार के साथ ही हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की झोली भर भर के बधाइयाँ।
1: जी, सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अनेक बधाइयाँ। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के हमारे सवाल से, यानी कि आकाशवाणी से जुड़ा आपका कोई अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता है, हमसे साझा कीजिए
0: और अपनी बात लिखकर हमें मेल कीजिए fmgoldga@gmail.com पर। मेल दोबारा नोट कीजिए fmgoldga@gmail.com पर।
1: श्रुति जी,
0: हाँ हाँ,
1: मुझे कुछ कहना है।
0: नहीं, पहले मुझे कुछ कहना है।
1: तो पहले आप।
0: नहीं, पहले तुम।
2: मुझे कुछ कहना है।
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: मुझे कुछ कहना है।
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम।
3: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह बॉबी फिल्म में कह रहे थे कुछ ना कहूँ चुप रहूँ, लेकिन अब मुश्किल चुप रहना है श्रुति जी, क्योंकि घर आंगन में हम दोनों आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम सुनते हैं एक संदेश।
2: शायर की गजल।
3: नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयां शुभकामनाएं देती हूं। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत।

0: ही सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। धन्यवाद।
1: पल दो पल
2: कौन?
3: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं सौम्या मिश्रा, लोक गायिका। मैं आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूं। और हमारे यहाँ लोक संगीत में जब कुछ खुशहाली होती है तो दो लाइन उसके लिए सोहर गाते हैं, तो आइए मैं कुछ दो लाइन सोहर आप सबों के बीच सुना रही हूँ।

0: आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं
1: और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर हमारी ओर से भी रश्मि जी। और दोस्तों, सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर न हो तो और भी अच्छा। जीवन में हर इच्छा पूरी हो जाए ऐसा संभव नहीं। हम योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पर कई बार परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत आते हैं।
2: और ऐसे ही समय में ये विचार हमें धैर्य और विश्वास का संदेश देता है। अक्सर जो बात उस समय बुरी लगती है, वही आगे चलकर किसी बड़ी खुशी का कारण बन जाती है। इसलिए असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए।
1: इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है रश्मि जी कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करें और परिणाम को सहज भाव से स्वीकारें। जब भी मन के अनुसार कुछ न हो तो निराश होने की बजाय ये विश्वास रखें कि प्रकृति ने शायद आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ तय किया है। यही सकारात्मक सोच जीवन को सरल, संतुलित और सुखद बनाती है। और देखिए रश्मि जी, हमारे पास मेल आनी शुरू हो गई है
2: जी।
1: और ये मेल हमारे पास आई है नवीन भाटिया जी की।
2: नवीन जी सर की सबसे पहले हमेशा मेल आती है,
1: ये हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं पहले मेल करके। और इन्होंने लिखा है कि जब मैं पहली बार ऑल इंडिया रेडियो आया था, आकाशवाणी आया था, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। ये कोई करीब 15 साल पहले की बात बता रहे हैं।
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
1: तो अब आपकी खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: देखिए कितना खूबसूरत गाना था ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीता मेरा नाम फिल्म से। और रश्मि जी, आज की तारीख जो है ना 23 जुलाई, हमारे इतिहास में बहुत ख़ास है, क्योंकि आज ही के दिन तीन बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जिसकी हम बधाई दे चुके हैं, और आज ही दो महान क्रांतिकारियों की जयंती भी है।
1: भाई आज जो प्रसारण, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, उसकी बधाई तो हमने दी ही है। 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई, और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से तब जाना जाता था, जो आगे चलकर आकाशवाणी बना।
0: ये वही आवाज़ है जो बरसों तक हर जन तक पहुंचती रही, और आज भी हम आपसे जुड़े हुए हैं। सच में रश्मि, आज कितना ही भावुक पल है ना, क्योंकि हम खुद भी इसी आवाज़ का तो हिस्सा हैं
1: जी। और एक और आवाज़ जुड़ी, वो थी आज के दिन 1906 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जन्म हुआ, और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का जो प्रण दिया था, और इस प्रण को उन्होंने अंतिम सांस तक निभाया। उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है।
0: और आज ही के दिन 1856 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म हुआ था। तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और जन जागरण के जरिए आज़ादी की अलख जगाई और लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया।
1: तो एक ही तारीख में हमें आवाज़ की ताकत भी मिली, और दो ऐसे महान सपूत भी मिले जिन्होंने अपनी आवाज से बुलंद कर आवाज़ बुलंद की और देश को जगाया। ये तो एक इत्तेफाक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आदमी और इंसान, इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुन रहे थे। साथियों, जुलाई का महीना खत्म होने को है और अगर आप नौकरी पेशा हैं या आपकी सैलरी हर महीने उसमें टीडीएस कटता है तो आप अपना आईटीआर भरने के लिए, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि तनख्वाह पाने वालों और पेंशन भोगियों के लिए इस साल रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। और अगर आप व्यापार या पेशा करते हैं तो दुकानदार, फ्रीलांसर या कोई भी पेशेवर सेवा देने वाले हैं तो आपके लिए तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं ताकि गलत तारीख को लेकर आपको बाद में परेशानी ना हो।
1: और श्रुति जी, रिटर्न भरने से पहले एक ज़रूरी काम ये भी है कि आप अपना जो फॉर्म्स है ना, जो मिलते हैं वार्षिक सूचना विवरण, वो एक बार जरूर देख लें क्योंकि इसमें आपकी सैलरी होती है, बैंक ब्याज होता है, अन्य आमदनी का पूरा रिकॉर्ड होता है। और अगर इसमें और आपकी असली आमदनी में कोई फर्क दिखे तो रिटर्न भरने से पहले उसे ठीक कर देना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आयकर विभाग है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन आंकड़ों का मिलान बहुत बारीकी से करता है। और अगर कोई गड़बड़ी छूट भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और मार्च 2027 तक कर दी गई है।
0: लेकिन ये बात बता दें रश्मि जी कि अगर तय तारीख तक रिटर्न भरने में आपको देरी हो गई है तो उसके लिए आपको जुर्माना भी लग सकता है जो आमदनी के हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 तक का हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है।

0: है कि आखिरी दिनों की भागदौड़ से बचने के लिए आप अभी से अपने दस्तावेज तैयार कर लें और समय रहते ये काम निपटा लें, क्योंकि सही समय और सही जानकारी से भरा गया रिटर्न न सिर्फ जुर्माने से बचाता है बल्कि रिफंड भी दिलाता है। तो अभी से आपके दिल में टिक टिक शुरू हो जानी चाहिए रिटर्न भरने की।
1: जी, मैंने तो अपना रिटर्न भर दिया। श्रुति जी, आपने?
0: हाँ, मैंने भी भर दिया है।

0: में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक फिल्म थी हमजोली और लता जी और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। और श्रुति जी, एक और मेल हमारे पास आ गई है जो आपने प्रश्न पूछा था कि
1: हमने ये प्रश्न पूछा था कि रेडियो से जुड़ा आपका कोई अनुभव हो, कोई विचार हो तो हमसे जरूर साझा करें।
0: और मेल एड्रेस
1: मेल एड्रेस था fmgoldga@gmail.com।
0: जी, और जो मेल हमारे पास आई है वो है नागलोई से गौरीशंकर जी, और वो कह रहे हैं राम राम, हमारी तरफ से भी राम राम जी। और कहते हैं कि भाई जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसे ही हम रेडियो भी सुनते हैं। एक दिन भी अगर ना सुने तो हमें लगता है कुछ कमी रह गई है, ऐसा लगता है। तो सुनकर हमें बहुत खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है जब श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं।

0: रेडियो से जुड़े रहते हैं
1: होता है जी। और जब रेडियो दिनचर्या का हिस्सा बन गया है तो समझ लीजिए कि वो एक जरूरी काम हो गया है और लोगों को सुनना ही पड़ता है और अच्छा भी लगता है उन्हें रेडियो सुन के। लेकिन रश्मि जी, कई बार ऐसा नहीं लगता कि कोई हम कहीं जाएं और कोई जगह हमें ऐसा लगता है उसके पीछे कोई कहानी है, कुछ ऐसी इमारत है जो खंडहर भी कहते हैं ना, कई बार दास्तान सुनाते
0: हैं जी।
1: तो पत्थरों की दीवारें भी कभी कभी कहानियां सुनाती हैं, बस सुनने वाला दिल थोड़ा सा ठहरा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, बात है भारत की उन पुरानी हवेलियों की जो कभी सेठ साहूकारों और व्यापारियों के वैभव की गवाह हुआ करती थी और आज संग्रहालय बनके हमें उस दौर की झलक दिखा रही हैं।
0: राजस्थान के जैसलमेर की पट्टुओं की हवेली 18वीं सदी में आखिर में सेठ गुमानचंद पटवा जी ने बनाई थी। और ये जो हवेली है ना, ये 5 छोटी छोटी हवेलियों का समूह है। इसमें बारीक नक्काशी है, जालीदार झरोखे हैं, जो इसे देखने वाले हैं वो दंग रह जाते हैं। लेकिन खास बात ये है कि एक हिस्सा जो है इसका संग्रहालय के रूप में खोला गया है, जहाँ पटवा परिवार की तस्वीरें, उस दौर की जीवन शैली से जुड़ी कलाकृतियाँ और अन्य चीजें सहेजी गई हैं।
1: और इसी तरह ना, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र को खुली हवा की आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, क्योंकि नवलगढ़ में स्थित डॉक्टर रामनाथ पोद्दार हवेली संग्रहालय एक और अनोखी मिसाल है, जो 1902 में बनी थी ये हवेली। और ये अपने भित्ति चित्रों के लिए मशहूर है, जिसमें लोक गाथाओं और उस जमाने की सामाजिक जीवन को, जिंदगी को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है।
0: और राजस्थान से हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। वहाँ पे जो कोलकाता का मार्बल पैलेस 19वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत हवेली है, इसे राजा राजेंद्र मलिक ने बनाया था। और हवेली की जो दीवारें हैं और फर्श मूर्तियां, वो संगमरमर की बनी है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा मार्बल पैलेस। और आज भी इस हवेली में मलिक परिवार की पीढ़ियां रहती हैं। साथ ही इसका एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में आम लोगों के लिए खुला है।
1: देखो, तमिलनाडु की भी सैर करा दें अपने श्रोताओं को। तमिलनाडु के कराईकुड़ी क्षेत्र में चेटीनाड शैली की भव्य जो हवेलियां हैं वो अपनी शान के लिए मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में कभी लगभग 11,000 हवेलियां हुआ करती थी, जिनमें से कुछ आज संग्रहालय का रूप ले चुकी हैं। तो दोस्तों, वो चाहे राजस्थान की बात हो, शेखावटी हवेलियां हो, बंगाल की संगमरमर जैसी सजी हुई हवेली, या फिर तमिलनाडु की शान खड़ी हुई चेटीनाड की दीवार, ये सब अपने अंदर एक संस्कृति को समेटे हुए हैं और हमारी विरासत की सबसे खूबसूरत पहचान है ये हवेलियाँ।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखिए

0: तेरे घर के सामने। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुन रहे थे। और रश्मि जी, एक मेल और आई है हमारे पास
1: जी।
0: और ये लिखने वाले हैं इद्रिस सैफी, और लिख रहे हैं कि मैं हमेशा आकाशवाणी से बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी फरमाइश भेजता हूँ मेरे सारे गीत सुना दिए जाते हैं। तो देखिए, ये भी अपने आप में एक अनुभव है
1: जी,
0: कि हमेशा हम इनकी ख्याल रखते हैं, इनकी फरमाइश पूरी करते हैं
1: जी। तो और एक और मेल आ गई है, मयूर विहार से सुरभी हमारे साथ जुड़ गई है। वो कह रही है कि बचपन में हमारे घर में जब रेडियो चला करता था तो वो रेडियो का ही नहीं काम करता था, बल्कि वो एक घड़ी हुआ करती थी। हमें पता चल जाता था ये फला फला कार्यक्रम आ रहा है तो क्या समय हुआ है, अगर समाचार आ रहे हैं तो क्या समय, और उसी समय के अनुसार हम तैयार हुआ करते थे। तो रेडियो का भी काम होता था और घड़ी का भी काम हुआ करता था। तो आजकल तो स्मार्ट जो फोन है वो काम करते हैं, लेकिन भाई रेडियो का जो समय की जो पाबंदी है, जो अनुशासन है, हाँ। तो वो तो अपने आप में ही घड़ी है।
0: और देखो ऐसा है ना कि ये जो मेल है ना, मुझे तो एक अलमारी जैसा लगता है कि कभी भी कोई
1: एक
0: भी
1: बॉक्स होता
0: भी,
1: है
0: हाँ, पुरानी भी वो।
1: और श्रुति, जब आपने हाँ। अलमारी की अगर जब बात की, तो भाई पुरानी अलमारियां खोलते ही कभी कभी हाथ किसी कोने में दबे एक डिब्बे तक पहुंच जाता है, और उसमें रखी अगर पुरानी चिट्ठियां मिल जाए, वाह, जिनके कोने पीले पड़ चुके हो, और उन्हीं चिट्ठियों के ऊपरी कोने में चिपका होता है एक छोटा सा रंगीन टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं डाक टिकट। उस दौर में चिट्ठी लिखना भाई एक पूरी रस्म हुआ करती थी, और टिकट चिपकाना उस रस्म का सबसे प्यारा हिस्सा।
0: आप जानती हैं रश्मि जी कि इंग्लैंड में रोलैंड हिल नाम के व्यक्ति ने डाक व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया था। उसने सबसे पहले उससे पहले क्या होता था कि जब डाक भेजने वाला नहीं बल्कि डाक पाने वाला पैसे चुकाता था, और दूरी के हिसाब से किराया अलग अलग होता था। हिल ने कहा कि अगर पहले से भुगतान किया हुआ टिकट चिपका दिया जाए तो व्यवस्था आसान हो जाएगी, और इसी सोच से जन्म हुआ दुनिया की पहले डाक टिकट का, जिसे पेनी ब्लैक कहा गया
1: जी। और भारत का जो पहला डाक टिकट है, ये 1 जुलाई 1852 में जारी हुआ। पूरे एशिया का ये पहला डाक टिकट माना जाता है। इसके कुछ साल बाद पूरे भारत के लिए आधिकारिक तौर पर डाक टिकट छापे गए, और धीरे धीरे ये छोटा सा कागज का हिस्सा, जो टुकड़ा है, वो हर घर की चिट्ठी का हिस्सा बन गया।
0: देखिए, आजादी के बाद हमारे अपने महापुरुषों की तस्वीरें भी टिकटों पर आने लगी। आजादी की पहली वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी भारतीय टिकट पर आने वाले पहले भारतीय बने, और उन पर 4 अलग अलग मूल्यों के टिकट जारी हुए। और खास बात ये थी कि गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन पर ब्रिटेन ने भी टिकट जारी किया।
1: भाई वाह, तो ये छोटा सा जो टिकट है ना, किसी देश के गौरव और इतिहास को कितनी खूबसूरती से समेट लेता है, यही तो कमाल है छोटे से कागज का। ये सिर्फ डाक भेजने का साधन नहीं है, बल्कि एक देश की संस्कृति की एक चलती फिरती गैलरी है। दुनिया भर में फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह करने का शौक इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग टिकट जमा करने लगे, और ऐसा लगा कि बिल्कुल पूरी दुनिया की यात्रा वो घर बैठे ही कर ले। सच में टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे ये इतिहास का एक जीवंत पन्ना है।
0: हाँ, और खत लिखना भी एक विरासत है।

0: खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, फिल्म थी आए दिन बहार की। और रश्मि जी, एक मेल और हमारे पास आई है, और ये मेल लिखने वाले हैं महेश अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ हरियाणा से। लिख रहे हैं कि आप दोनों बहनों को नमस्कार और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो से हम बहुत प्यार करते हैं और हमारे आसपास कई रेडियो हैं, यानी इन्होंने कई रेडियो रखे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और आगे लिख रहे हैं कि हमें तो रेडियो सुनने में बहुत मजा आता है, जो मजा हमें आकाशवाणी सुनने में आता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं आता।
1: क्या बात है। और यहाँ दिलशाद गार्डन से राघव लिख रहे हैं, कहते हैं कि मुश्किल सफर हो फिर भी मंजिल तुम्हें मिले, मझधार में हो नाव तो साहिल तुम्हें मिले, हमने तो रब से रात दिन मांगी है ये दुआ, हर हाल में जो खुश रहे वो दिल तुम्हें मिले। आकाशवाणी को प्रसारण राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी यहाँ के जो प्रोग्राम प्रेजेंट करने वाले हैं शेरो शायरी बोलते हैं और हमें गीत सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और उनसे हमें बहुत कुछ उच्चारण के बारे में सीखने को मिला, बोला कैसे जाता ये सीखने को मिला। और साथ में लिख रहे हैं कि भाषा के संस्कार जो हमने आकाशवाणी से सीखे हैं उनका, उनके लिए मैं बहुत हमेशा से आकाशवाणी का शुक्रगुजार रहूंगा। भाई वाह, कितनी सुंदर मेल लिखी है राघव ने।
0: हम शुक्रगुजार रहेंगे इनके, आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, हृदय से आभार अभिव्यक्त करते हैं जो आपने हमारे को इतना अच्छे से परखा। और रश्मि देखो, गांव की बातें कुछ याद है तुम्हें? गांव में जब मेले की भीड़ होती थी ना, तो वो ऊंचा सा एक तंबू लगता था और जब ढोलक की थाप सुनाई देती थी और वहां पर अनाउंसमेंट होता था, आ जाओ अमर सिंह राठौर खेलने देखने आ जाओ, तो एक सेकंड लगता था जब सभी अवाल वृद्ध नर नारी सब उस तंबू के आगे जमा हो जाते थे और फिर धागे से बंधी जो रंग बिरंगी गुड़िया हवा में नाचने लगती थी, तलवारें लिए झूमती हुई, मानो सचमुच जीवंत तो हो जाती थी।
1: भाई यही तो है कठपुतली कला। भाई इस कला की जो जड़ें हैं भारत में बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में महर्षि पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नाटक का जो उल्लेख किया है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले भी भारत में कला मौजूद थी।
0: और देखो आज अगर हम राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान की डोरी वाली कठपुतली आज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। इन कठपुतलियों के जो वस्त्र और साज सज्जा है उस क्षेत्र की चित्रकला, वास्तुकला और वेशभूषा की अच्छी खासी झलक हमें देती है।
1: जी, और पश्चिम बंगाल में पुतुल नाच और उड़ीसा में कठिकुंधई नाच में छोटी कठपुतलियां जो है वो धागे और डंडे की दोनों की मदद से नचाई जाती हैं। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो छाया कठपुतलियां हैं वो चमड़े से बनी होती हैं और पर्दे के पीछे से रोशनी डालकर उनकी परछाइयों के जरिए कहानी कही जाती है।
0: और देखो इस तरह हर राज्य ने अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपने लोक जीवन के रंग इस कला में घोल दिए हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। एक ही कला पूरे भारत में अलग अलग कितने रंगों में जीवित है, आज भी राजस्थान के कलाकार इसे जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, डोरियों से बंधी हो या यादों से, हर कठपुतली अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और यही कहानियां तो संस्कृति की असली पहचान है।

0: रश्मि जी आप देखो कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है तो हमें ना चाहते हुए भी श्रोताओं से विदा लेनी है
1: जी,
0: तो
1: कल के मिलने के लिए और रश्मि कुकरेती और
0: मुझे श्रुतिपुरी को दीजिए अनुमति
1: और हम कहते हैं आपसे नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्र मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। हमारी घड़ी में समय हुआ है दिन के 1:10 और आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसे आप सभी जानते हैं, भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर जी का जिक्र होता है तो एक ऐसी फिल्म का ख्याल सबके मन में आता है जिसमें समाज, इंसानियत, देश प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी 1960 की क्लासिक फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। राधु कर्माकर द्वारा निर्देशित, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों और शंकर जयकिशन के कालजयी संगीत से सजी इस फिल्म की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगले आधे घंटे तक हम जानेंगे डाकू के हृदय परिवर्तन और सीधे साधे राजू की ये अमर दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजू के इस चुलबुले और मासूम अंदाज के साथ।

बहुत ही खूबसूरत गीत। श्रोताओं, मुकेश जी की आवाज और राज कपूर जी की मासूमियत, ये जोड़ी हमेशा कमाल करती थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू से। राजू एक अनाथ, बेहद भोला भाला और नेक दिल इंसान जो डफली बजाकर गाना गाकर अपना पेट पालता है। एक दिन राजू एक घायल शख्स को तड़पते हुए देखता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान की उसने मदद की है वो चंबल का एक खूंखार डाकू सरदार है। डाकू राजू की मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित होता है, उसे अपने गुरुओं के पास लेकर जाता है। राजू समझता है कि ये रॉबिन हुड की तरह गरीबों की मदद करने वाले भले लोग हैं। इस बीच उसकी मुलाकात होती है सरदार की बेटी कमली से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। कमली यानी अभिनेत्री पद्मिनी के अद्भुत नृत्य और अदाकारी ने इस फिल्म में जान फूंक दी। जब राजू डाकुओं के ठिकाने पर रहने लगता है तो कमली और उसके बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन राजू अभी भी इस कड़वे सच से अनजान था कि ये लोग बंदूक के दम पर निर्दोषों का खून बहाते हैं।

श्रोताओं कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सरदार की मौत के बाद राका यानी प्राण डाकुओं का नया सरदार बनता है। राका एक क्रूर और हिंसक डाकू है। एक शादी के दौरान जब डाकू पूरे गांव में कत्लेआम और लूटपाट मचाते हैं तो राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये दया नहीं बल्कि नग्न हिंसा है। राजू का दिल टूट जाता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू देखता है कि पुलिस भी डाकुओं को सुधारने के बजाय उन्हें एनकाउंटर में ख़त्म कर देना चाहती है। तब राजू के मन में सवाल उठता है कि अगर अपराध को ख़त्म करना है तो अपराधी को मारना हल है या उसके अंदर पनप रहे पाप को मारना। राजू फैसला करता है कि वो डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मनाएगा।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, होठों पे सच्चाई रहती है, ये केवल एक गाना नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। ये फिल्म महात्मा गांधी की उस विचारधारा को दर्शाती है जिसमें कहा गया था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजू जब डाकुओं के बच्चों और महिलाओं को देखता है तो वो उन्हें ये सही रास्ता दिखाने के लिए तड़प उठता है। वो डाकुओं को समझाता है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

अब लौट चलें। ये गाना सिर्फ राजू का बुलावा नहीं था बल्कि भटक चुके लोगों के लिए सही रास्ते पर वापस आने का एक संदेश था। श्रोताओं, अंत में राजू की ईमानदारी, प्यार और अहिंसा के सामने राख और बाकी डाकू अपने हथियार डाल देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस फिल्म ने 1961 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। राज कपूर जी का अभिनय, पद्मनी की सुंदरता, प्राण साहब की कड़क अदाकारी और मुकेश जी का, हम ये कहें कि उनकी रूहानी आवाज, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक अमर कृति बनाया। आज भी जब देश में शांति और सद्भाव की बात होती है तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारी सादगी और सच्चाई में है। उम्मीद है आपको जिस देश में गंगा बहती है इसका यह संगीतमय सफर पसंद आया होगा। मुझे यानी अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, हम आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

अभी हमारे श्रोता सुमृति कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण हुई खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को छेती तो छेती से सख्त सजा देने लिए फास्ट ट्रैक अदालतां स्थापित करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक समेत वख-वख मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दोपहर बाद 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव से अज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। भारत ने सिंधु जल संधि बारे संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को रद्द करते हुए कहा कि जिन्ना चिर पाकिस्तान सरहद परों दहशतगर्दी हथियार वजो वरतता रहेगा संधि बहाल नहीं की जा सकती। भारत और जिम्बाबे 3 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच अज हरारे में खेलिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को छेती तो छेती से सख्त सजा देने लिए फास्ट ट्रैक अदालतां स्थापित करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा सरकार की सब तो वड्डी तरजीह दस्या। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नौजवानों की भलाई और भविष्य सब तो महत्वपूर्ण ने। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट प्रीख्या प्रश्न पत्र लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर विखे चल रहे विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सारे जरूरी कदम चुकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हितों की राखी लिए किए जा रहे उपावों की एक लड़ी का हिस्सा है। एनडीए के विरोधी धिर के संसद मैंबर ने आज संसद भवन के मकर गेट से विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के संसद मैंबर ने सदन में नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले से चर्चा की मांग की, जबकि विरोधी धिर के मैंबर ने सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग की। बीजेपी प्रधान और राज्यसभा मैंबर नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार हर पद्धर से विद्यार्थियों और नौजवानों के भविष्य से चर्चा करने पूरी तरह तैयार है। पत्रकारों नाल गलबात करदे श्री नवीन ने कहा कि लोकसभा में विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी और समुची विरोधी धिर सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य नौजवानों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाना है।
1: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को विद्यार्थियों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। संसद भवन में पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उन्हां लोगों विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन दौरान कथित तौर पर उन्हां विरुद्ध ताकत की वरतों की। उन्होंने प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों नाल सीधी गलबात शुरू करने की भी अपील की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले समेत वख-वख मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दोपहर बाद 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने तो बाद जदों लोकसभा दोपहर 12 बजे मुड़ जुड़ी तो विरोधी धिर ने नीट पेपर लीक मुद्दे से विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सभापति दिलीप साइकिया ने सदन के सुचारू कामकाज लिए विरोधी धिर के सहयोग की बेनती की। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी धिर खास करके कांग्रेस को नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोधी धिर वालों निर्धारित तरीक और समय अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा प्रगटाई है।
2: सब पार्टी ने यह मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू की अपील के बावजूद विरोधी धिर के मैंबर नारेबाजी करदिया सभा के विचकार आ गए। इसते सभापति ने सदन दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखी गई। जदों राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे मुड़ शुरू हुई तो विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट प्रीख्या पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वजीर आजम मोदी का बयान नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी जरूरी इकदामात के लिए मुतालिका हुक्काम और ओहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फैसला किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वजीर आजम के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये फैसला उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और ये फैसला एक संगे मील साबित होगा। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से तआवुन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस जरूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो इस बात का फैसला करे कि बहस का आगाज कब होना है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्यवाही पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन

अर्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुलिस ने वाजे किया कि ये झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोचेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरियत मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डैन के साथ वक्त सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी इशाइये का अहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में सुरंग के वाकये की पूछताछ के लिए आईजीपी की जिर निगरानी एक आला सतह की चार मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आजाद खुले सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहरे हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदाम पायरेसी सामान और मुनशियात की गैर कानूनी तजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाई सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रायजनी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर ये इल्जाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज का जेर इंतजाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फरोग देने की इजाजत होगी। अमरीकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज्यादा रिसाई फराहम करेगा। 23वीं दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मीराबाई चानू और लोवलीना बोर्गोहाइन सीडब्ल्यूजी 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाई सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा कि मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: फाइनल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
1: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक

0: मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां फेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
3: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
4: इट्स रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर

0: के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
1: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
1: जी,
0: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
1: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
0: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
1: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन

0: और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
1: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
2: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
3: चलो पकड़ते हैं माधव को,
4: पकड़ लेंगे।
1: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
4: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
1: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
4: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
4: अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
2: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
1: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
4: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
6: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
7: जी महाराज।
6: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
4: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
6: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
4: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
6: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
4: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
7: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
8: महाराज की जय, महाराज की जय।
1: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
9: उसका ये दुस्साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
1: राजा वेश बदल कर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
10: आज मैं राजा बनूंगी।

0: आज मैं राजा बनूंगा।
1: आज तो मैं राजा बनूंगा।
2: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
3: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
4: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
4: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
0: हमने तो देखा है।
6: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
4: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
7: जय हो।
5: महाराज की जय हो।
7: जय हो।
8: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
9: महाराज महाराज जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
10: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
8: शिला जब खोद कर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
11: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
10: चोरी।
8: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
10: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
11: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
8: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
11: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
10: झूठ।
8: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
11: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
10: चोट? वो
8: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
11: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलु

0: था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया।
2: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
5: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
6: अरे मशकूब भाई,
7: जी जनाब,
6: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
7: लीजिए जनाब।
6: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
7: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
6: रखो रखो।
7: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
6: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
7: शुक्रिया
6: शुक्रिया।
5: अमृत वाला आ गया।
8: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
9: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
6: मशकूब भाई।
7: जी जनाब।
6: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
7: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
6: लाओ। बस बस,
7: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
6: सही कहा मशकूब भाई।
7: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
6: अभी तक तो कुछ नहीं।
7: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
6: अरे नहीं नहीं
7: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
6: भाई
7: जी,
6: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
7: क्या बात करते हैं,
6: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
7: इसमें नेकी की क्या बात है?
6: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
7: ये तो मेरा फर्ज था।
6: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
7: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
6: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
7: अच्छा।
6: उसकी बीमारी

0: आग कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
0: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा।
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
2: अरे भाई, अकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
3: जनाब,
4: लाजवाब इंसान है वो।
3: क्या बात कर रहा है,
4: क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
5: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
6: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
5: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
6: पैसा लाए हो?
7: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: मुंह उठाए खाली आप चले आते हो।
7: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
7: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
7: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
7: मर जाएगा ये।
8: उठा,
7: मर जाएगा अकीम साहब।
8: चलो निकलो बाहर।
5: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
9: अमृत वाला आ।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हसबे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए,

सह पहर के तीन बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामईन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इससे मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री रिच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस से सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

अब आप अर्जुमन अली खान से खबरें सुनिए। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में दरियाए सिंध आबी मुहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि मुहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। अमरीका ने मुसलसल 12वीं रात ईरान पर फिजाई हमले किए। दोनों ममालिक शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं और ग्लासगो दौलत मुश्तर का खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वजीर आजम मोदी का बयान नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है।

जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी जरूरी इकदामात के लिए मुतल्लिका हुक्काम और अहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फैसला किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रेजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से ताउन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में ताउन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजाबंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस जरूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह इस बात का फैसला करे कि बहस का आगाज कब होना है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से ये कहते हुए अपील की कि वो शरायत न रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है लेकिन पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मरकजी वजीर और ऐवान के रहनुमा जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि अपोजिशन न तो बहस चाहती है और न ही ऐवान का कामकाज चलने देने की ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कांग्रेस ने नीट पर बहस का मुतालबा किया और हुकूमत ने जवाब में कहा कि वो नीट पेपर लीक मामले समेत सभी मामलों पर बहस के लिए तैयार है। जनाब नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एक नई शर्त रख दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोत्रोक्सेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोसर डैन के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी ईशाइये का एहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक अहम शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौता मुकम्मल होने के बाद आने वाले बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इकतसादी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आज़ाद खुले सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुलकाहिल के अपने अज़्म का इआदा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुलकाहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलों पर तबादले ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहर हिंद खत्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुलकाहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदाम पायरेसी सामान और मनशियात की गैर कानूनी तजारत से निपटने में मदद के साथ

ये था आंखें फिल्म का नगमा, आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये नगमा। मौसीकी ओपिनियर की

सबको अपनी कॉमेडी अदाकारी से हंसाने वाला ये इंसान, ये अदाकार 23 जुलाई सन 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा जावेद रहेगी उनके चाहने वालों के दिलों में।

0: पुरसुकून जिंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है, एक पुरसुकून माशरे में कैसे टॉलरेंस के साथ रहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कसीर मजाहब का मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ तहजीब भी है, मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले हैं। शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी नजीर दी जा सकती है कि इतने मजहब, इतने ख्यालात या इतने कल्चर के लोग यहाँ पर आबाद हों। तो ऐसी जगह पर रह करके जब हम अमन की बात करते हैं तो हमारी आवाज एक बुलंद आवाज बनकर के उभरती है, और एक ऐसी आवाज 20वीं सदी में उभरी थी जिसका नाम था महात्मा गांधी, या जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। हमारी पूरी तहरीक आजादी में एक सबसे नुमाया नाम जिसने हमें अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस की तरफ मतवज्जे किया और दुनिया को यह पैगाम दिया था कि अगर आप चाहें तो बगैर तशद्दुद के आप हर एक काम कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर मुमताज अहमद रिजवी साहब, एडिटर रोजनामा कौमी भारत। आप दोनों का हम इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में कि आप दोनों आए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: एक तरफ हमारे साथ प्रोफेसर बैठे हैं, एक तरफ हमारे साथ सहाफी बैठे हैं, और मैं ये भी बता दूं आपको कि राजीव रंजन गिरी साहब का ताल्लुक चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से है, लेकिन ये बड़े गांधीवाद आदमी है। अपनी जिंदगी में गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं, इस पर अमल करना पसंद करते हैं और दूसरों को भी अमल की दावत देते रहते हैं। इस बात के लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और सहाफत के मैदान में हमारे नौजवान हैं डॉक्टर मुमताज अलम रिजवी साहब, जिससे उर्दू दुनिया बखूबी वाकिफ है और उनकी तहरीरों से वाकिफ है। तो इन इस गुफ्तगू को क्या आज जो दुनिया में चैलेंजेज हैं अमन के लिए और जिस माहौल में हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया जिस माहौल, जिस दहशत के माहौल में रह रही है, वहां पर हमारे बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी के जो पैगामात थे वो पैगामात किस हद तक रिलेवेंट है। बशीर बद्र के इस शेर से मैं दावत देना चाहूंगा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो बशीर बद्र ने तो आज कहा था कि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, लेकिन हर दौर में मोहब्बत की जरूरत रही है।
1: बिल्कुल।
0: और जिगर ने जैसा कहा था कि हमारा काम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, तो ये तमाम बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं मुमताज आलम रिजवी साहब से जानना चाहूंगा कि आप एक सहाफी हैं, मुल्क या पूरी दुनिया की सियासत पर, तारीख पर आपकी नजर रहती है, तो ये बताएं कि हमारे गांधी जी ने किस तरह स्ट्रगल कर करके दुनिया के सामने एक शांति का नमूना पेश किया।
1: आपने एक शेर पढ़ा बशीर बद्र का, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, एक अपना और एक गालिब का, कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना
0: जी।
1: बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। और मैंने कहा कि जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी
0: जी,
1: जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत
0: बदल जाएगी बहुत।
1: और मैं समझता हूँ कि ये शेर, ये फिक्र हिंदुस्तान की ज़मीन से पैदा हुई है, क्योंकि हम अदम तशद्दुद के मानने वाले हैं और बाबाए कौम महात्मा गांधी ने तो पूरी तहरीक इसके ख़िलाफ़ चलाई जो जंग है। और हिंदुस्तान में भी आप देखिए कितनी बड़ी जंग लड़ी गई तहरीक आज़ादी के हवाले से, लेकिन कहीं भी तशद्दुद को सामने नहीं रखा गया, हमेशा जो है अमन की बात की गई है। और इसकी वजह क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम 2 आलमी जंग जो हमारी हुई हैं, जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ और हल फिर भी बातचीत से निकला
0: जी।
1: ऐसा नहीं है कि जंगें हुई तो बातचीत नहीं हुई, आखिर में नतीजा यही निकला और दुनिया ने इस चीज़ को कबूल किया कि नहीं, तशद्दुद से मसले का हल नहीं निकल सकता, बल्कि अदम तशद्दुद, बल्कि मोहब्बत, प्यार और बातचीत से ही मसला निकल सकता है। और आप देखिए कि गांधी का जो नज़रिया है, कोई भी हिंदुस्तान में नज़रिया कुछ भी रखता हो, लेकिन जहां जंग की बात आती है, तशद्दुद की बात आती है, वहां अदम तशद्दुद के हवाले से गांधी जी याद करते हैं। मुल्क में भी आप देख लीजिए किसी भी नज़रिए की कोई पार्टी हो, लेकिन जब आलमी सतह पर हम देखते हैं तो वहां भी गांधी जी को सामने रखा जाता है और उसी हवाले से हम पैगाम देते हैं। आप देखिए उसकी वजह क्या है, पहली जंग हम सब जानते हैं कि 25 जुलाई 1914 को इसका आगाज होता है और ये जंग 4 साल के करीब चलती है, 11 नवंबर 1918 को ये जंग खत्म होती है। और आप देखिए कि इसमें मौतें जो हुई हैं, नुकसानात जो हुई हैं, कि फौजी हलाकतें आप देखिए कि

0: करीब 5,52,000 लोग फौजे जो हैं वो इसमें लोग जो है हलाक हुए। आप सोचिए कि 5,52,000 हाँ, और इसी तरह ये एक तरफ की मैं बात कर
1: जी
0: रहा हूं,
1: जी
0: क्योंकि दो हिस्सों में दुनिया बटी
1: बटी
0: हुई
1: हुई
0: थी,
1: थी।
0: और दूसरी जगह 43,66,000 के करीब लोग जो है मारे जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद अगर हलाक होती है तो जाहिर से बात है कि आप सोचिए कि ये हलाकतें सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि पूरे पूरे घर तबाह हुए
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: और फिर उसके नुकसान। फिर आप देखिए कि दूसरी जंग जो शुरू होती है उसको भी आप देखें कि उसका आगाज होता है कि 1 सितंबर 1939 को,
1: जी
0: और फिर 2 सितंबर 1945 तक ये जंग चलती है, और इसके भी बड़े खतरनाक नतायज इस जंग
1: निकलते
0: के रहे
1: हैं।
0: हैं। पूरी दुनिया एक तरीके से मफलूज हो गई है, हो गई थी। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं। फिर तीसरी जंग के बारे में जो पेशीन गोईयां हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर प्लांट हैं, आप देखिए जगह जगह न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो नस्ब किए गए हैं, ऐसे में अगर तीसरी जंग होती है तो जाहिर है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें इस बात पे फक्र है कि अदम तशद्दुद की बात हिंदुस्तान से जा
1: हिंदुस्तान
0: रही
1: से
0: है, और
1: शुरू।
0: गांधी जी याद किए जा रहे हैं इसीलिए। और मैं गांधी जी के नजरिए को, अपनी सरजमीन को, कि जिसने हमेशा जो है मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, अपनाइयत की बात की, मेरे ख्याल से विश्व गुरु अगर हमारा हिंदुस्तान बनेगा तो इसी नजरिए से, गांधी के नजरिए से ही विश्व गुरु बनेगा। और जंग को दुनिया में रोकने के लिए अगर कोई खड़ा होगा मजबूती से, अभी
1: तो
0: यूक्रेन
1: हिंदुस्तान
0: में आप
1: होगा,
0: देखिए कि हिंदुस्तान ने जो है
1: हथियार
0: कहा है कि नहीं, इसको आप जो है बातचीत से हल कीजिए, हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम सिर्फ बातचीत के साथ होंगे, ये एक बड़ा कदम है, और यही जो है मुस्बत पहलू दुनिया के सामने जाएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज अलम रिजवी साहब कि डॉक्टर साहब इन्होंने तो पूरा पस मंजर बयान कर
0: जी
1: दिया कि पहली आलमी जंग,
0: जी
1: दूसरी आलमी जंग के दौरान क्या क्या नुकसान हुए, कितने लोग मारे गए और कितने घर तबाह बर्बाद, कितने मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। शायद बाज़ मुल्क तो उभरने में उनको 25-30 साल लग गए। इन तमाम मंजर को सामने रखते हुए आप अगर गांधी जी को आंकना चाहें तो क्या कहेंगे?
2: देखिए, जो शांति का ख्याल था, उसका जो तसव्वुर था, वो पहले दुनिया के स्पिरिचुअल परंपरा में, रिलीजियस परंपरा में मौजूद था।
1: जी
2: गांधी जी ने उसको पॉलिटिकल सवाल को हल करने के लिए टूल्स
1: यूज करना शुरू
2: के
1: किया।
2: तौर पर अपनाया और स्थापित भी किया, पूरी दुनिया को एहसास कराया कि ये सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक चीज नहीं है शांति, इसके जरिए आप सिविल राइट्स का आंदोलन लड़ सकते हैं और अपना सिविल राइट्स पा सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की तरफ जा सकते हैं, आप नागरिक अधिकारों की शिनाख्त कर सकते हैं और उसके उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो गांधी जी का था, वो बार बार इस बात को कहते थे कि अगर आंख के बदले आंख लेने की शुरुआत हो और इसी पर दुनिया कायम रहे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, फिर उसको बचाया नहीं जा सकेगा। तो किसी भी एक आदमी को बर्दाश्त करके भी चलना होगा इस पर कि एक आंख भले ही फूट गई, पर अब सामने वाले को इसका एहसास कराया जाए कि न उसकी फूटे न हमारी फूटे। तीसरी चीज, चूंकि ये कल्पना और या विचार के तौर पर ये बात लोग सुनने में अच्छा लगता था, पर लगता था कि दुनिया के स्तर पर इसको कोई मानेगा नहीं। गांधी जी ने पहले साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही इसको स्थापित किया। इस साल जो यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस के अवसर पर विषय रखा है, इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, आप सोचिए पूरा सूत्र जुड़ता है वहां से, गांधी से।
1: जी
2: पहली बार एक आदमी को जो पूरा पढ़ा लिखा है उसको एहसास होता है कि केवल हमारे रंग की वजह से, हमारे देश की वजह से हमारे साथ इस तरह का
1: व्यापार
2: अत्याचार
1: होता
2: हो
1: है।
2: रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो गांधी की सबसे बड़ी खूबी इस मामले में है वो ये कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी निर्भय बना देना, उसको साहसी बना
1: जी
2: देना, या आप जो दूसरा तरीका है, जो जंग का तरीका है, युद्ध वाला तरीका है, शांति से मुख्तलिफ तरीका है, उसमें हमेशा ताकतवर की चलेगी,
1: जी
2: पर जो शांति वाला तरीका है इसमें कमजोर
1: सिर्फ
2: से
1: निर्भय,
2: कमजोर व्यक्ति भी उसमें आगे बढ़ सकता है,
1: उस
2: एक
1: प्रोसेस का
2: चीज
1: हिस्सा बन
2: हिस्सा
1: सकता
2: बन
1: है।
2: सकता है और वो उसके जरिए अपने हक और हकूक को पा सकता है। एक चीज हमें समझना चाहिए, जो दुनिया की सारी दार्शनिक या ज्ञान की परंपराएं हैं उसमें जो अभी सर चढ़कर बोल रहा है विचार, वो ये कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, या शक्तिशाली ही आगे बढ़ेगा,
1: बढ़ेगा
2: ताकतवर आगे बढ़ेगा। गांधी कहते थे

0: ये तो जंगल का कानून है। तो फिर पशुओं में और हम मनुष्यों में क्या
1: क्या
0: फर्क
1: फर्क रहेगा?
0: होगा अगर हमने सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा की है और जो पशु से लेकर मनुष्य तक की हमारी यात्रा है, या हम मनुष्यों का मस्तिष्क कुदरत ने सबसे ऊपर बना के रखा है, तो हमें सोचना होगा कि हम कैसे उनसे भिन्न रहें।
1: जी,
0: जंगल में हो सकता है सबसे ताकतवर का
1: कि
0: राज
1: जंगल
0: चले,
1: राज रहे
0: उसका
1: वहां,
0: रहे जो ताकतवर है, पर
1: लेकिन
0: यहाँ
1: दुनिया में ना रहे,
0: जो
1: संसार
0: इंसानी
1: में ना
0: दुनिया
1: रहे,
0: है
1: उसमें ना
0: उसमें
1: रहे।
0: ना रहे। ये गांधी बार बार सिखाते समझाते और तमाम जोखिम लेकर भी इसको
1: आगे
0: इसके
1: बढ़ाते रहे।
0: आगे बढ़ाते रहे। एक खास बात मैं अभी, चूंकि इन साहब ने जिक्र किया दूसरे विश्व युद्ध का, गांधी का हिटलर से कोई संपर्क नहीं था, पर उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को पत्र लिखा, 3 पत्र, और कहा कि चूंकि तुम भी मनुष्य हो और मैं भी मनुष्य
1: मनुष्य
0: हूं और
1: हूँ,
0: इसी धरती के हम दोनों वारिस
1: इंसान
0: हैं,
1: है। हाँ
0: इंसान है, इसलिए इस रिश्ते में तुम मेरे भाई हो
1: हाँ
0: और मैं तुमको ये सिफारिश करता हूं, तुमको पत्र लिखता हूं। बार बार उन्होंने जो असंभव दिखने वाली चीज है उसमें भी एक सूक्ष्म संभावना, पॉसिबिलिटी की तलाश करने में वे हमेशा जुटे रहे। और इस लिहाज से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए या संसाधनों पर कब्जे करने वाले लोगों को एहसास कराने में कि आपका लालच सब कुछ का जिम्मेवार है और इसकी वजह से पूरी दुनिया को आप नरक बना रहे हैं, आप इतने 5,000 या 10,000 साल की यात्रा को 1 मिनट में, 1 सेकंड में मटिया मेट करने को उतारू हैं, तो ये वो हमेशा बताते रहे, समझाते रहे।
1: डॉक्टर साहब, कहीं पर गांधी जी ने एक बार लिखा था
0: जी
1: कि दुनिया में अगर आप पीस कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए विपिन की जरूरत नहीं है।
0: जी
1: तो फिर वो विपिन क्या है गांधी जी के पास?
0: हाँ, गांधी हमेशा वो कहते थे कि ये जो हमारी अभी मिलिट्री है अलग अलग तरीके की, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, कहते थे इसकी बजाय पूरी दुनिया में शांति सेना बनाई जानी चाहिए और युद्ध को किसी निदान के तौर पर न देखकर एक मसला के तौर पर देखा जाना चाहिए कि वो अपने आप में वो समस्या है। युद्ध कभी किसी चीज का हल नहीं कर सकता। और वो पूछते थे कि आप इसके असली कारण तक पहुंचे कि किसी भी जगह युद्ध होने का कारण क्या
1: क्या
0: है,
1: है?
0: तो युद्ध होने के कारण के तौर पर दिखता है कि आपको अपनी साम्राज्यवादी भावना का, अपने अपनी बाउंड्री का प्रसार करना है, दूसरे की चीजों को हड़पना है, आपको अपना जितना है उसमें संतोष नहीं है, आप दूसरे के हक और हकूक पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए युद्ध होता है। तो वो उस कारण को समझने की बात हमेशा करते थे कि कारण को ही ठीक अगर कर दिया जाए, लोगों की चेतना को, उनके मस्तिष्क को ही ठीक से समझा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, तब युद्ध नहीं होगा। और जो फिर भी समस्या अगर पैदा होती है तो शांति सैनिक इसकी बात करें, आपस में
1: आपस में बात
0: हर
1: करें।
0: जगह के शांति सैनिक रहें और वो इसके लिए रहें।
1: आपसे और गुफ्तगू अभी जारी रहेगी हमारी। एक बार फिर मैं मुमताज
0: जी
1: रिजवी साहब से मुल्तमिस होना चाहूंगा।
0: जी
1: मुमताज साहब, ये गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकल पीस की बात तो नहीं की थी,
0: जी
1: उन्होंने तो कहा था कि जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के जितने शेड्स आपके पास है उसमें पीस आना चाहिए, और पीस अगर कायम करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में और तवील मुद्दत तक, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अगर पीस करना चाहते पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के बच्चों के अंदर पीस पैदा कीजिए।
2: नहीं, बिल्कुल ये सही
1: ये क्या,
2: है।
1: ये बच्चों के साथ पीस पैदा करने की बात क्या
2: नहीं देखिए,
1: थी?
2: ऐसा है कि हमारे यहाँ तो तारीख है कि बच्चा जब पेट में होता है, हमल से औरत होती है, तो वहीं से वो सीखने लगता है। आप खुद देखते होंगे कि किस तरीके से अभिमन्यु ने पूरी जंग सीख ली थी पेट के अंदर, और आखिर में वो जाग गई, क्या हुआ, बेदार हो गई, जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए, वरना पूरा सीख लेते। तो इसका मतलब ये है कि जंग की बात हो या अमन की बात हो, हुनर की बात हो या गुमराही की बात हो, ये बचपन से ही, जब घुट्टी में जिसको
1: जी
2: कहते हैं
1: जी जी
2: अगर
1: तरबियत।
2: तरबियत, और घुट्टी में अगर वो चीज़ पहुंच जाए कि नहीं, हमें अमन की बात करनी। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन ऐसी है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करते हैं, जब हम मादरे वतन की बात करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि ये जो ज़मीन है, ये जो खित्ता है, ये इतना जरखेज़ रहा है हमेशा से कि यहाँ कभी नफ़रत की बात ही नहीं हुई। हम हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ अगर नफ़रत भी बोई जाएगी ना,
1: तो
2: तो
1: मोहब्बत
2: जब
1: बनती
2: जब दरख्त निकलेगा तो उससे मोहब्बत
1: बती
2: पैदा होगी।
1: फूटेगी।

0: पर टूटेगी। और ये सही है, देखिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, बचपन में आप खुद जानते हैं कि बचपन की यादें आपको अभी भी जो है वो हॉर्न करती हैं। आप माजी की तरफ जब जाते हैं, यादों की पगडंडी पे चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत मुतासर करती हैं कि ऐसा ऐसा, और वो कई बार आपको गलत रास्ते से रोक भी लेती हैं वो बातें बचपन की, कि नहीं, ये बातें हमें माँ बाप ने बताई थी, या कोई बुजुर्ग ने ये बात कही थी, नहीं, इससे ये ठीक नहीं। तो क्या है कि इसीलिए गांधी जी हो या कोई हो, वो बचपन से, आज हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो भी आप देखिए कि नए बच्चों को, कि आने वाली नस्लें 47 में जब देखेंगी तो क्या है वो चीज़ें जो हैं कैसे। तो हर चीज़ जो है बचपन में, उस चीज़ को जब दिया जाता है ज्ञान या इल्म, तो वो बहुत देर पा होता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए गांधी जी के हवाले से हबीब जालिब का एक शेर है कि जुल्म के होते अमन कहाँ मुमकिन यारो, इसे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। जुल्म है, ज्यादती है, जब ये चीज रहती है, और जब अदमे अदालत हो, यानी इंसाफ जहां पे ना हो, तो अमन कायम नहीं किया जा सकता। दुनिया में देखिए क्यों जंग हुई, आलमी जंग जो हम बात कर रहे हैं, हुई क्यों? कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, कहीं ना कहीं छीना झपटी
1: वो
0: की गई।
1: ज्यादती ना हो तो फिर हर जगह अमन कायम रहेगा।
0: जाहिर है, इंसाफ, देखिए, जब तक अदल कायम नहीं होगा, जहां अदल कायम नहीं होगा वहां झगड़ा होगा। और इसीलिए हमारे जो मजाहिब भी हैं, अगर आप देखें, तो वो क्यों अदल की बात करते हैं? जब अदल होगा तभी अमन होगा।
1: तो
0: देखिए,
1: मजहब तो अमन की बात
0: तो
1: करता ही
0: इसी
1: है।
0: नहीं इसीलिए अमन की बात, अदल की बात करता है। देखिए,
1: अदल
0: पहले अदल की बात होती है, इंसाफ की बात होती है। जब आप इंसाफ की बात करेंगे, अदल की बात करेंगे, तो अमन उसमें पोशीदा है, अमन
1: तो
0: उसमें
1: नहीं,
0: पोशीदा है।
1: आपकी बात एकदम दुरुस्त है। और मुझे याद आता है कि सेवाग्राम आश्रम में जो प्रार्थना हुआ करते थे,
0: जी
1: उस प्रार्थना में ना सिर्फ ये कि किसी एक मजहब की किताब से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल करके पढ़ा जाता था, बल्कि वेद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल और दूसरी मजहबी किताबों के भी एक्सट्रैक्ट निकाल करके
0: आज
1: पढ़े
0: भी,
1: जाते हैं, और
0: आज भी,
1: आज
0: आज
1: भी
0: भी
1: पढ़े
0: भारतीय
1: जाते
0: विद्या
1: हैं,
0: भवन
1: है
0: में
1: ना?
0: मेरा बेटा पढ़ता है, वहां
1: हाँ
0: पे आप देखिए,
1: हाँ
0: आज भी वहां भी अरबी में दुआएं हैं
1: हाँ
0: और संस्कृत में दुआएं अलग अलग, ऐसा नहीं है, आज भी यही।
1: आज भी ये सिलसिला। तो हमारी ये जो अमन की परंपरा है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन जड़ों को हिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन जड़ों को सबसे आगे ले जाने वाला कोई हिंदुस्तानी है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार हरिजन में किसी अंग्रेज ने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर साहब, तो उस इंटरव्यू में उसने कुछ सवाल किए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर आप महात्मा गांधी को अमेरिका की सारी दौलत दे दें तो वो उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का इत्मीनान हो जाए कि ये तमाम पैसे इंसानियत
0: सही
1: के लिए,
0: तरीके से आए हैं।
1: इंसानियत की भलाई के लिए खर्च ना हो। तो यानी कि वो, उनकी नज़र है तो हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के अंदर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेजों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र विश्व शांति पर है कि पूरी दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। जरा आप इस पर नजर
0: जी,
1: डालें।
0: असल में मैं फिर आपको जो जहां आप जिक्र कर रहे थे गांधी के सेवाग्राम आश्रम का,
1: जी
0: जहां उन्होंने आरंभ कराया प्रार्थना सभा में
1: जी
0: कि सारे धर्मों की पवित्र ग्रंथों से कुछ कुछ पंक्तियों को साथ पढ़ा जाए और सब
1: जी
0: लोग एक साथ पढ़ें, ये शुरुआत थी। और हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ तनाव रहे होंगे, कुछ परेशानियां रही होंगी, और अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने श्रेष्ठता बोध में खुद को बाकियों से अच्छा मानते होंगे, इसलिए गांधी जी को जरूरत पड़ी कि हम सबको एक साथ
1: एक साथ
0: बैठाकर
1: बैठा
0: पढ़ाएं
1: के।
0: और सर्वधर्म संभाव, सबके धर्म के प्रति आप अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म को भी आदर
1: आदर
0: दें,
1: दें।
0: जिससे एक सहिष्णुता का भाव पैदा हो और तनाव खत्म हो। तो ये तो हम लोगों को मानना होगा कि पूरी दुनिया में तनाव के कई कारण रहे हैं, जिसमें से एक धार्मिक तनाव भी रहा है, जिसको सुलझाने के लिए गांधी जी ने लगातार कोशिश की। अब एक दूसरी चीज, वो इन प्रार्थना के जरिए आप याद कीजिएगा कि वो हमेशा पहले वो मान कर चलते थे कि ईश्वर ही सच्चाई है, पर बाद में लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सच्चाई ही ईश्वर है। पर सच्चाई को परिभाषित कैसे किया जाए, ट्रूथ को कैसे परिभाषित किया जाए?
1: बहुत तफसील
0: तो
1: से
0: हाँ
1: उन्होंने
0: जी,
1: बयान
0: तो
1: किया था।
0: उन्होंने इसको कहा कि ट्रूथ का मतलब हुआ अनजस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज,
1: न्यायपूर्ण समाज।
0: कि ऐसा समाज बन जाए, या उसको अगर बढ़ाकर कहें तो एक ऐसा राष्ट्र

0: बन जाए, ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी ना हो।
1: बहुत
0: और ये सत्य है, यानी नाइंसाफी का नहीं होना ही ईश्वर है। अगर किसी मुल्क में, किसी दुनिया में, किसी समाज में, या किसी परिवार में, किसी संगठन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सबके साथ न्याय हो रहा है, तो जस्टिस हो रहा है, तो इसका मतलब वहां ईश्वर की मौजूदगी है। क्योंकि गांधी हर चीज को एक स्पिरिचुअल या धार्मिक प्रतीक या उसके जरिए ही देखने समझने की कोशिश करते थे। बहुत पवित्र ख्याल के जरिए इन सारे विचारों पर वो सोचते थे। इसलिए वो धर्म को अलग नहीं करते थे, अध्यात्म को अलग नहीं करते थे, राजनीति को अलग नहीं करते थे। जीवन की सारी चीजों के बीच एक ऑर्गेनिक रिश्ता देखते थे वो। पर वो मानते थे कि ये हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा। अब हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा, तो इस हिंसा को के खात्मे के तौर पर जो गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हिंसा के खात्मे के लिए हिंसा ही की जाए या
1: जी
0: हिंसा के खात्मे के लिए अहिंसा के जरिए आया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ये कुछ
1: विचार
0: लोग
1: है।
0: मानते हैं कि नहीं, हिंसा को हिंसा से भी
1: हाँ
0: खात्मा
1: विपिन,
0: करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर गांधी कहते थे फिर आप एक अहिंसक दुनिया नहीं बना पाएंगे, आप जो सिविलाइजेशन बना पाएंगे
1: जी
0: उसमें फिर हिंसा रहेगी ही, उसमें फिर वायलेंस रहेगा ही, उसमें फिर अन्याय रहेगा ही, गैर बराबरी रहेगी ही। तो गांधी इन सारी चीजों को देखते के साथ एक स्ट्रक्चरल वायलेंस के प्रति भी सचेत थे कि हम कोई ऐसा ढांचा भी बना लें, दुनिया ऑर्गेनाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा ऐसा हो जाए, नेशन स्टेट का ढांचा ऐसा हो जाए, या दुनिया के स्तर पर देखें तो ताकतवर मुल्क बाकी देशों के साथ अपनी बातों को ढांचे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर मनवा लें। तो गांधी उससे इनकार करते थे। वो कहते थे मैं अकेला व्यक्ति भी रहूंगा तब भी इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, इसके खिलाफ बोलता रहूंगा। और इसीलिए वो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत भी बहुत अच्छा लगता था कि अगर तुम्हारी कोई आवाज ना सुने, जो दी तेरा
1: भाई
0: राग सुने ना कोई,
1: हाँ,
0: एकला
1: अकेला
0: चलो
1: चलो
0: रे,
1: रे,
0: एकला
1: अकेला चलो
0: चलो रे,
1: रे।
0: अकेले चलो
1: जी
0: अगर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता है। तो गांधी जी हमेशा इस बात की ताईद करते रहे, इस पर जोर देते रहे, अर्ज करते रहे सबसे कि पहले संसाधनों का बंटवारा बराबर करो और किसी की जरूरतें इतनी अधिक ना हो जाए या किसी के पास इतनी अधिक चीजें ना हो कि दूसरे के पास कुछ भी ना हो, और उसके जरिए हिंसा होगी और उसके जरिए शांति नहीं कायम की जा सकती। और वो बेहतर जीवन के लिए शांति की बात करते थे। एक बात पर और वो जोर देते थे
1: जी
0: अपने शिष्यों के बीच कि हम कुदरती तौर पर पीस के समर्थक हैं, हम उत्तेजना में, गुस्सा में, नफरत में, एक मोमेंट में तो रह सकते हैं पर लगातार नहीं रह
1: लगातार
0: सकते,
1: नहीं,
0: लंबे
1: हमेशा
0: समय
1: नहीं,
0: तक नहीं रह सकते।
1: हमेशा नहीं रह
0: अगर
1: सकते।
0: कोई कौम या कोई व्यक्ति भी लंबे समय तक नफरत और गुस्सा की आग में जलते हुए रहेगा तो उसके भीतर एक हार्मोनल डिसबैलेंस होगा
1: होगा,
0: और वो धीरे धीरे भले ही वो मनुष्य के तौर पर उसका
1: रहेगा
0: शरीर रहे,
1: रहेगा।
0: लेकिन वो जेहनी तौर पर नहीं रहेगा, वो पशु हो जाएगा और राक्षस हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत तफसील से आपने सारी बातें बताएं, बस एक नुक्ते पर और बात करनी है,
0: जी
1: और चाहूँगा कि हमारे रिजवी साहब, मुमताज़ आलम रिजवी साहब, इसका जवाब दें कि देखा आपने कि पॉलिटिकल सतह पर उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान में कोई तशद्दुद ना हो और आज़ादी की जंग हम जीत जाएं। बड़ी हद तक कामयाबी उसमें मिली इनको, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया। तो पॉलिटिकल सतह पर फिर डॉक्टर साहब ने बात बताई कि किस तरह सोसाइटी की सतह पर, समाज की सतह पर, तमाम मजहब को लेकर के चलने की कोशिश की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने हर सतह के इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की। मजहब के इख्तलाफात को दूर करने के लिए आश्रम में एक साथ तमाम मजाहब के एक इज्तिमा किया। इसी तरह जब हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू का झगड़ा हुआ तो ये हिंदुस्तानी का अलम लेकर के खड़े हो गए और कहा कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जबान इस्तेमाल करें जिसमें ना उर्दू बहुत ज्यादा होगी ना हिंदी बहुत ज्यादा होगी, बल्कि दोनों की आमिजस होगी। क्या राय आपकी?
0: नहीं, देखिए इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी कायम है,
1: जी
0: वो इसी की बुनियाद है।
1: जी
0: और हमने वो रिसाला भी देखा है कि जिसमें सिर्फ स्क्रिप्ट जो है अलग, यानी एक लिखावट,
1: एक रस्मुल खत में, एक
0: दो
1: देवनागरी में।
0: भाषाएं, एक लिखावट। तो आप देखिए कि वहाँ रिसाला अब भी शायद निकलता होगा, मैं
1: निकलता
0: नहीं
1: है,
0: जानता।
1: अभी भी निकलता
0: तो
1: है।
0: अच्छा, उसमें जबान का, फिर हम लोग जो बोलते हैं, आप देखिए कि हिंदी उर्दू अभी जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये इसीलिए था, देखिए ये इसलिए था क्योंकि आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो मुल्क तकसीम हुआ तो उसका इल्ज़ाम एक जबान पे दे देते हैं, लेकिन अगर गांधी जी को आप देखेंगे तो वो इल्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तो जबान

0: का वही खत्म हो गया था। तो ये जो गांधी जी का, देखिए जिस तरीके से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस तरीके बहुत सारी चीजें। और फिर वो जहाँ हिंदुस्तान में भी आप देखिए कि आखिरी वक्त में भी जब ज्यादा फसादात हुए तो धरना दे करके वो बैठ गए कि हम उठेंगे नहीं। तो इस तरीके की शख्सियत जो है, और इसीलिए आप देखिए पूरी दुनिया में गांधी जी का मुजस्समा है और उनके लोगों के दिलों में मुजस्समा
1: और
0: बने हुए।
1: वो शख्स कितना अमली था, प्रैक्टिकल था कि अगर कलकत्ते में फसाद हुआ तो वहां पहुंच रहा
0: मैं
1: है,
0: वही कह रहा हूं, हर
1: वहां
0: जगह
1: हजार
0: में वहां
1: किलोमीटर तक
0: पहुंच
1: जो
0: रहा
1: है
0: है, लोग
1: बिहार
0: आप
1: में पहुंच
0: बचते
1: रहा
0: हैं,
1: है।
0: एक ट्वीट करते हैं, लेकिन वो उस वक्त जब संसाधन नहीं थे, अब तो लोग जा सकते हैं,
1: हाँ, आराम
0: अब
1: से जा
0: फसाद
1: सकते
0: होता
1: हैं।
0: रहता है, लोग सियासत करते हैं। मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा,
1: जी
0: वो अहले सियासत हैं, वो उनका काम जाने,
1: जी
0: मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन ये कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि गांधी जी इतना बड़ा सिंबल हमारे साथ है, इतनी बड़ी ताकत, जो नजरिया है, देखिए नजरिया ही ताकत होती है,
1: जी
0: बाकी
1: जी
0: कुछ नहीं होता है,
1: जी
0: कि आपका नजरिया क्या है वही ताकत आपकी बनती है। और आज फिर हम कह रहे हैं कि अगर विश्व गुरु हिंदुस्तान बन सकता है, भारत बन सकता है, तो वो गांधी जी के नजरिए से बन सकता है। इसलिए गांधी जी को याद करना बहुत जरूरी है। गांधी जी एक एसेट है हमारे, और उनके नजरिए पे चल के हम हिंदुस्तान को तरक्की दे सकते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हमने कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया
1: दुनिया
0: में
1: में
0: हमने
1: भी।
0: कायम कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सामिन, ये गुफ्तगू आप सुन रहे
0: शुक्रिया।
1: थे गांधी जी और आलमी अमन के सिलसिले में, और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह इसको बयान किया कि किस तरह सियासी सतह पर गांधी जी ने कोशिश की, समाजी सतह पर कोशिश की, मजहबी सतह पर, यहाँ तक कि लिसानी सतह पर भी हमाहंगी, दोस्ती, मेल मिलाप, शांति पैदा करने की ये कोशिश जो कर रहा है उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान के है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, या दुनिया की तारीख इन्हें फरामोश नहीं कर सकती। हम अपने दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, राजधानी कॉलेज, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, एडिटर रोजनामा कौमी भारत,
0: जी
1: का शुक्रिया
0: शुक्रिया,
1: अदा करता
0: बहुत
1: हूं कि
0: शुक्रिया
1: आप
0: मोहन।
1: दोनों ने बड़ी तफसील से और बहुत रिलेवेंट अंदाज में ये गुफ्तगू की। और हफीज के इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली।
2: अभी तक हम नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम में पर आकाशवाणी करगिल है, 4 बजने वाले हैं। हम आकाशवाणी देहरादून से प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार करें।

0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन, नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। मां भी एक अकम्प्लिश्ड एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी नहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोलवेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था।

इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी, और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की, और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी है। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशन्स दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया।

अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ, जानेंगे आगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना की वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटर्न टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने

संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया, विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: Muchas Akashwani, Kargil Kanazarinut, Urdaluk Saskulagur again to Hinmata Hapchigat, Doctor Mohammed Abbas Shitana.
1: Assalamu alaikum, Julie, Nati Radio Kargil and Kankula, Na Abbas Kalander, Ayantidunuk, Diring Urdaluk program, Matas Diring, first lady Bariang Zashik, Matang, Mozindu Chamana, Zarin, Chesabana, first aid po, Masanga, Sushizanata, emergency situation, Chano, emergency halat, Chanungata, first aid Chesilucius, Pomana Zarin, Chanadunata, Chiva Chinder can Paspal, Leva Chiva Chinder, Chespomana Zarin, Chesabana, Golden Minute Zare, De Guma Wakat Pika, Qua Sai Jan Karika Toyote, Yadika, Etiat Basaga, Elashik, Basana Kato, Garichan, Ambulance Yanko, Jagachika, Health Center Chika, Lebna Kato, Quaka Fee, Straw Hatra Chachasana, Beniki Strong Solution. Mates, then a Zahumi Elash was over Chindekatas Shrubet, but a Zahum Gar Gandason Sutna Yuspa, Bliksa Bachas Pazarin, Mamuk Shakzar and Nakshapo, Chinchao, Hatra in Yara, Chesabando, Pura Bullet Poban Basetekna Turi, Lakpa, Kamaga, Kaban Baseta, a part post Kanspe Hatra and Krakma Gershik. तो मलेबल उसना इस कम्पनी सब उसे सही तरीका तो इनकी टिंचर चीक लेखमो बंडेज चीका कॉटन चीका टिंचर तांसे यान ना सेटलाइज उत्खन से चले जख्म पब्लिक साब बसे चुई का साब बसे या चुई में साबुन का साब बसे ना प्रेशर बंडेज रहते का मोटा बसे बंडेज चीक दानुक टिंचर तांसे ने बिटरीन चीक तांसे एंटीबायोटिक चचिन दो दे जख्म पे तांसे रब ना ने का तो खो मलसा चे लेप चुना ते लखपान अस दम से जख्स या रब ना ने जख्चा सर चीक पोज खे जख्म में चां उस बो क्रक पो डुल चुक चा चाने दू चो खे क्रक पो बंद बसे जगह चे लेप चुना खो आज लेगे ना फायदा चचिन फर्स्ट एड पो आते ओपन हुई ना सब उसे मैनेज फर्स्ट एड तांसे उस पो देना होकर आए निस्पा आते फर्स्ट एड जरूर मसलन यार पता सों ची फोक्स ना शकां ची शख्स रुस्पेक शख्स का तो दुख जना देर रुस्पा चक्कन मिला यार मकाद नार मकाद जो जो इलाज बस ना बाकी रुस्पा चक्कन पुला दे रुस्पे गो इसका थू नहीं होना का तो खा जर्मो मामो चिन याद यान उस सेक्स दम से छत पे खतरा चचिन दे रुस्पे जलमा या मलसे जुक पे खतरा चचिन छाना गाप फ्रैक्चर के ऐसे का तो आदस मलसे का ट्रांसफर बचिन ना लेप चुक चिन ना गाड़ियां कले मलसे चे खर्चिन ना फर्स्ट एट यंग आती जनरल मीमांस ना दोर तस्पा तो पुरोशिन की दे फ्रैक्चर चकनी रुस्पे गेन ज्वाइंट पर यो ज्वाइंट पर इसका यंग चुक से या गत्ते तो मैंने सी तख्ते किया राम फ्रूटित मजना पेटी दे श्रमो तख्ताला बंडे चिंग से खुआ मिजुक चबा से कॉटन चिंग या रुमाल चिंग या लफिश चिंग से मिजुक चबा से ना दो सपोर्ट लेता हूँ से ना दो नशे से बंडे चिंग से सिप्लिन नति मेडिकल ऐसा भी कुछ नहीं सिप्लिन तां से क्यों जा मने जरूरी दो चिकपा खुआ यार मकाम मामू चचा में स्क्रांशाओ कम चचिन पेशेंट पुला जर्मो मामा खो आराम का लिपचिन मलसा चिका तो सुनपे स्पिरांग आज देना यार आता मसलन चिकचिया फोक खुदा न खास्ता या मैं तो कुछ चाहिए सों या छू चाहिए बुद्ध सों चौक पीन से ना चौक ताचा आते सार डूल लेने में नुको और कुछ हिस पीन ना में नुको लोट ताचा तकदीर का तो हिस पीन दियो ना कोई लंग सुन ठीक होती है और सा का तो फारे नहीं होता कोई हार्ट पस दस बेन होती है सब बच्चे ना तां स्ट्रोक छे खतरा सब बच्चे एबीसी जरे एयरवेज चीन और बी से ब्रीदिंग जर्चिन रहते हैं दोनों सी से सर्कुलेशन जर्चिन फर्स्ट रहते हैं ए बी सी संका मेंटेन बस से खोचा और मेंटेन बस से मलसा चाहे लेप चुचा और इमीडिएटली मेंटेन बच उस पर मन जरूरी छाना गते गर सीन का तो कोई गुल डुल इन मिद ना साउंड फर इन मिद ना इमीडिएटली खुआ चेस्ट कंप्रेशन जरे यानी कि 60 पर मिनट ये सभी का मिनट यानी 60 रेट ये सभी का

0: ལག་པ ཡིན སྐན དུ ཏེཀ་ནིཀལ ང ཏ ཅི ཤིན ཝིདིཡོ ཁེན ཏ ཐོ ཅིན ཡང ཨ ཏེ ཅི ཅི ཁན ཚབ རོ ཤིན ཡ ཕ་སྟ ཏིགར མ་སན ཁ་ལ་ཤི ཡ་ཟ མ་ལ་ཚ མ་མ ཏ્રેનિંગ ཏ མ་དེ ཏ્રેનિંગ ཡོན པོལིས པ་ཏ མ་ མེ་ཌིཀལ པ་ཏ མ་ ཌིཛ་ཏར མེ་ནེཇ་མེན པ་ཏ མ་ ཆན དེ ལག་པ ཡིན སྐ ལག་པ ཅིག པེ ཅིག པ་སེག་སན ང ཏེ ཟ་དོ ཁོ བ્રང པེ ཁན ནེ ཁོ ཧར་པ པམ བེ ཨེད ད རེད ཨོཾ ཡ་ནེ ཁི 1/3 ཅི ཁོ ཅེཅ་ཏ ཡ་ནེ ཁི ཁོ ཅི མོན ནང་ལ ཆ རོ ཤིན दि लक्पा इसका ना पंप तांसे सट फेरा एक मिनट या छः सप्पों को पंप बारोशिन और दो बार गते को रेस्पिरेशन तामे कोशिश बारोशिन अगर कत को हिस फीन में ना तो हिस फीन में चस पला रेस्पिरेशन पुगा तो तांचिन जने बेहतरीन इन खोज नला शकोकमा या टुटियां या खें जंग गख से खाख सों से सा सों से दो सों से या कसु सो तक सों जिन दे सों बुत सों से मिंदुल तसे दोंस ना साब बसर के पेका एम्बू बैक जिन दे एम्बू बैक पने एम्बू मासक तक से हवा तमोशिन तो दो का तो मैं ना मन डिस्परेट कंडीशन चाह मुश्किल हालत चाहनु जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जरें आते मन चंग मिथो भी जगह चाहनु खान आते हवा तम चीन और दया ना खुआ का तो जरूरी देखा थे गोशा है तो दोनों का तो खोज एकदम से कोई पल्स पो रेस्टोरसों से या खो गूल है खो स्पेरा तं से या खो हिस फिंग का तुम अभी ना ऑक्सीजन तं से अम्बू मेघ जरे का ऑक्सीजन कंग खुआ ऑक्सीजन पर कनेक्ट बसे योत्से का फैसिलिटी उत्से का ऑक्सीजन कनेक्ट बसे अम्बू बैग ने अम्बू रेस्परेशन आर्टिफिशियल रेस्परेशन जरचिन यू स्टार्ट बा चाइना दी ए से एयरवे बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन सर्कुलेशन चक पुंगाते सा फर नोमिंदुक देखने पता छचिन मेनली ज्यादातर पो हिस पिंचा मता खे छाती गुले नोमिंदुक या खे स्नमचुल शन पर शीशे गते आइनिक जगनाते का लास्पा छिन या खवा स्कत बिंग मचो छिन नता चाइना दुई का रेस्पिरेशन रुल नोमिंदुक दो का पता छचिन शुक्रिया
1: लोक से स्कूल हगवान तफना बिन चुतपिन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शितना मीडियम एक दो आकाशवाणी करगिल स्तुतकार इंतखंदा तहलब चुगत यन मजात
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

Nazgaz gagelir çe Fokhojar sama khudana Infyunghe

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहा है इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर

दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है।

0: हिंदी और अंग्रेजी में खबरें अब आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडियम में पर आकाशवाणी करगिल है, जनतला समाप्त करें। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल की जान से मौसला के इतला के मुताबिक
1: After she suffered a defeat against China's Chen Yufei in the women's singles round of 16. In men's cricket, Zimbabwe were 108 for 5 in 17 overs against India in the first T20 international of the three-match series in Harare when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.

हिंदी और अंग्रेजी में खबरें अब आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडियो में पर आकाशवाणी करगिल है, जनता समाप्त करें। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी

0: 2026 तक जमा कराएं। एक और अल्लाह समाप्त करें, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय खुम्बतन करगिल की जानिब से मौसला के इत्तला के मुताबिक जिला करगिल के स्कूलों में पांचवीं जमात में ज़ेर तालीम बच्चों के वालदेन को इतला देते हैं कि जिन बच्चों की तारीख पैदाइश 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के दरमियान हों, जवाहर नवोदय विद्यालय खुम्बतन करगिल में छठी जमात में दाखिला के लिए इम्तहान में हिस्सा ले सकते हैं। और उनसे कहा गया है कि 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। मज़ीद तफसलात के लिए प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय खुम्बतन करगिल के दफ्तर से राबता कायम करें।
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ!
2: फर्जी ऑफर से होशियार,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में।
3: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारतीय मीमांग सुन्न यम्बो ग्रक्चा इन खुरी सिंह स्पेरन योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पोग यम्बो नशिर बचाइन दो मैन मा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईदू जगपजत योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।
4: रंगी बिजनेस उन लस्के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन उन लोकल इन या फायुली थोकिकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब लेपी स्कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंदर चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
5: نتزا کاشوانی کرگیل کن زرینت استود خارجی انتخاب می‌کنه لب جوگت نیم مزد.
6: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: saga pruchi mi saga yong ming chans in diesel mo mangmo kharik po nga ta khare wari riksi kang yong chen chu dona kharik nga te fried cheese nyang tel chil mangmo chana nga tir wen nok mota pa cha chen chu ga nga ti di mota pa nga tir wen nga tang mota chana di nga ti rugos di mota che sa po nga ta di snot pet pi zanun nga ta zasi yong chin chu gan fried cheese zanun ya kharik nga tes bato ato zere ya packet food bazari hotel hotel izan mun nga tes za chen chu dius base nga ta di diabetic zermo mang kharik po doni kana yong me nga ta chas in chu di diabetes zermo nga tes control jak pi ming na nga ta tips ga man kha chan yo tin chu sak pa six nan la nga ti rguel jit po mang mo yot na nga ti chi ba sang nga tes nga ti rguel jit pro control yang bridge se nga ti hesap chi ya kor go shin chu manang in che nga tir go physically fit yong mar go shin chu yang nga tir go shuk shuk na physically active na yong mar go shin chu nga ta rgos pet pi nga ti khangme nga ti lakchuk si kana bing mat pi nga ti sakhyat kuni kana bing mat pi nga ti local janun nga ta mang kharik po de janun nga ta nga zar go shin chu Kasata Diana Zermes Kola Ngati Fespa Doctor Doctor Mehdi Shabani Akashwani Kargili Studios Kyotiot Doctor Sabikana Di Zermes Kola Fespa Basi Ngates Ngati Ngan Kanun Sakpek District Lab Chuget Assalamu Alaikum Sir
1: Alaikum Salam Jo
0: Sakpa Chiks Nalla Yarang Ujut Sering Mozeret Yarang Akashwani Kargili Studios Kyote Ngati Ngan Kanun Sakpek Di Topik Unika Hago Tangma Yon Chaspi Fila Yarang Ujut Sering Mo Vakshis
1: शुक्रिया जो इंतज़ का उनका अधिकार टाइम तांस भी दे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस भी फिला क्योंकि दे टॉपिक लेके से इम्पोर्टेंट इन लेके से ज़रूरी इन ताकि गति सोसाइटी नुक माहौलियत में नुक यों में दे एमर्जिंग बीमारी निंग आतंस कंट्रोल वांगे नुक
0: kasa sir di topic po zan nga ta nga ti dare nang ga nang chang in ga mana family chang in di zer mo man am chi nga ti ga nang piang in nga ti ama in a te ga in ya mga ti chimi nang khas karik po man kharik po chimi nang nukha diabetes zere high blood pressure zere nga ti mana har nang nga ta diabetes zer mo nga ta nga chuk zer me gin des ko la
1: chachi gong chin ki communicable disease chin yani ki यहाँ चिक ना यहाँ चिक लबियर भी दे बीमारी नो चिन फॉर एग्जांपल या छुई वजह से का कोई सोर्स पर लग लाओ चिन छुई वजह से का से वजह से का या हवाई वजह से का चिक ना ए चिक पर मिचिक लसन से ने दो ए चिक पर फैलाई से चांस इन दोनों आते कम्युनिकेबल डिजीज
0: कैसे
1: क्योंकि दी बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि का चिक लसन से ने खा जरूरी मेन के यहाँ चला फैलाई छाला तो दी आता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अंडरिंग कैटेगराइज बचनो
0: कैसे
1: ताना ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट पे रहा हूँ चिनकी लाइफ स्टाइल ही वजह से का बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यूँ चिन खासकर जैसे कि अति पहला अलग अलग रिस्कते रिस्क फैक्टर्स यानी दो वजह कुन दे कॉज कुन दो वजह से कभी बीमारी छकन बुन लगाते रिस्क फैक्टर्स अगर देन आता अलग अलग अलग रिस्क फैक्टर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अति बीमारी खचिक एज वजह से खेत ओल्ड एज दो खुरंग ओल्ड एज ही आतेस इलनेस का तो दे अलावा आता चीज़ात खाचिक यंग एज नुक सुन से चुक फ्रोस के चना कुछ चीज़ों की कमजोरी या जेनेटिकल जेनेटिक्स से कुछ फैक्टर्स की वजह से फॉर एग्जांपल आता ना डायबिटीज से आता ना कसम खाचिक हो चिन डायबिटीज टाइप वन हो चिन टू हो चिन थ्री फोर फाइव अलग अलग फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज टाइप वन पर आता ना ज़्यादातर सुन से फ्रू ने नुक ज़्यादा थोत दो देखा ना सोच सन की दे फ्रूआक्स लिंग आते हैं दो लोग जैसे कंजनाइटल एनोमलीज या कंजनाइटल कॉज जो भी हमारे कंजनाइटल डिसऑर्डर्स को जरूरत फॉर एग्जांपल डायबिटिक टाइप वन पो आते हैं सुन से फ्री वाखला दे फ्रूला यूथ पे दे पैनक्रियाज जरबी दुखे क्यों चिन आते हैं योक पेनुक देन पैनक्रियाज जरबी आते हैं ग्लैंड चीत दो चीपत जब नॉर्मल ह्यूमन इन कुछ हॉर्मोन्स यानी दस उस चीज़ात कुन खोज देना सिक्रीट बैठ की दो गाताला डाइजेशन या दूसरे मेटाबॉलिज्म को निगाता हेल्प बचने निगातेर गोगा पोस्चुआ फिला बॉडी ग्रोथ फिला बॉडी अलग अलग पार्ट्स को फंक्शन फिला गाताला देनो हार्मोन्स को हमेशा ज़रूरत छे जिन फॉर एग्जांपल दी पैनक्रियास पे उन्होंने गाताला हार्मोन ची उम्मत की इंसुलिन जबत दे इंसुलिन पोसी हरानला दिस ऑल लाज

0: प्रिवेंशन को निगाता जितना हो सके, हाथी शुगर लेवल पो कंट्रोल बचे। देखा नाम अच्छा नगाता सेकेंडरी नुगाता लसमान मेडिकेशंस को नियोत नाता डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स यो देखा नाम अच्छा नाता इंसुलिन आतेस बाहर ने इंजेक्ट बाद देखो ना दोन दे फिलबस इनकी ताकि नाता ला कॉम्प्लिकेशंस यानी लॉन्ग टर्म चंग इशू मिशा चुप फिला।
1: कसर दी जर्मन हा दारे nga ta ti sur mon ta mot pot hon di nga shuvar yo den chi khara mot pos zamamin duk bato zamin duk mazo des pin de dun cham chik chak par hez bar gushin ya zer bachen yo ki agar ka tong atis di nga ta di diabetic patient chi ge dun la mana asna ma ba ya man lip khara mo zin chana kho heart attack zere nga ta chorin du ki ha eko shuvar yo pin sul pa ha heart attack yo su de gana ko gal zere mot ngata thorin duk do cham chik ke ngata di patient unis par hija pollution gran izani ka derna ya sman wan len chik ka den
0: pehla ngata sa ka chai ko diabetes confirm yo ti amet
1: kasa
0: diabetes zabana type 2 po wan pana ko alag qasam pasung
1: kasa
0: to koshish padi yo ki sa ek general khuri har si body mass po alag yo do khong khuri hisab ka body weight po maintain jakcha
1: kasa
0: या तो दिवस तचा कि गति फॉर एग्जांपल दरेन गति लका टेस्ट काफी होते नता फॉर एग्जांपल खस्तों के ब्लड टेस्ट बना दो नता पता ता कि गति ब्लड शुगर पोचम से लुसिन दो
1: कैसे
0: या गति से देखन जान जो से बक्चर के अपना घंटे के सर के अपना बना नता पोस्ट प्रैंडियल नता पता छत कि जान जो सर के अपना नता चम से इंसुलिन गेल ने होतो
1: कैसे
0: या गति लका यंग टेस्ट करते होत कि गता पूरा महीना महीने पता छत कि 3 महीने नुमाती ब्लड शुगर पो चाउन से लुसिन दो HbA1c जर खन करतो तो दोस्त गता लो ओवरऑल पिक्चर चितात कि गति शुगर कुन चाउन से लुसिन दो चाउन से गता मेंटेन बार वो शदो या वेट पो चाउन से फॉर एग्जांपल गस दिलिंग वेट कंट्रोल पे कोशिश बान 1 महीने ने फॉर एग्जांपल 5 किलो कम बन गई इंसुलिन ये शुगर पो चाउन से ड्रॉप छिन दो गति लगा दरे पूरा पिक्चराइज बन गन छत मगर फॉर एग्जांपल जगह खची के दो मैथ ये लगाना टेस्टिंग सिस्टम में ना दैट्स इन मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूवमेंट तो दे जगह नहीं के अच्छी बेकी जरूरत दे जगह नहीं के गाता ले कोशिश पुदी बार को उसकी गाते जितना हो सके गाता मतलब कोशिश पुदी की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे सकता है दे सब चीज़ात कुन खास कर दी खड़ी रिक्स पो नॉर्मली ना हमेशा कम बारूशिन चाहे नॉर्मल पेशेंट ही ना क्योंकि खुए नुकसानात पे ज़्यादा होते दे अलावा स्नूम पो स्नूम जर बना जैसे तो खुए होते यानी दे आप फैट्स हों सैचुरेटेड फैट्स जरे गाते हैं तो दोन जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स ही नगाता घी वी दस सों दोन कम बचा
1: कैसे
0: या लेन ना कि खास एक दी देखो गाता दी मिंदो सनफ्लावर होंगे सनफ्लावर होंगे या दे अलावा गाता ना जैतून तेल हों दोन मतलब ओवरऑल डॉक्टर सब स्टडीज को नहीं कि बेहतर है जरे क्योंकि दोनों इफेक्ट पर कम है जरे क्योंकि चर्बी क्रक में चर्बी लेके ज्यादा छाना कि क्रक देर नस कुन ब्लॉक छ चुके एक तो ब्लॉक छ क्रक चर्बी ने चर्बी ने नस पो दे अलावा डायबिटीज उत्पन्न शुगर पे उत्पन्न खोला देर सान इनो सान सुन छाना पता से हुआ मैं छता दैट्स ऑल अ पूरा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ही वजह से आता लेते कि नॉट गिवन सो से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफेक्शंस और बीमारी ने आता देन सब पर नतीजा निकल लेवे तो कोशिश पर दी कि यो बच्चा की लाइफस्टाइल पर ठीक जाक छा स्मोकिंग पर मे बच्चा क्योंकि स्मोकिंग ही चंग तक्सन सब पर चंग बेनिफिट छ या अल्कोहल दैट्स ऑल्सो अवॉइड बच्चा या कोई टोबैको चीज दैट्स ऑल्सो लेने ना दोनों अवॉइड बच्चा जितना हो सके बैलेंस डाइट जाक छ लाइफ स्टाइल मॉडिफाई जाक छ एक्सरसाइज पर मेंटेन हर रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज तो हर जगह ने बेनिफिट है देर ले चाहे को डायबिटीज हो या हाइपर टेंशन हो या कोई भी दूसरा बीमारी है तो सब एक अच्छा इम्प्रूवमेंट को जाहिर बचन
1: कसा सर दूसुंग डायबिटीज स्कोर ला हाँ डायबिटीज स्कोर ला यारे सा तफसील नहीं हम बो फेस पर बस लेंगे तीन अंक सौ पहले कसा तंग अतेस हाई ब्लड प्रेशर जरे गता बीपी जरे आम गती मेमां सुने अंग गता थों है दी हाई ब्लड प्रेशर पोग चुक्षिया गता अच्छे दी स्कोर ला चीज़ ना वर्ष
0: यहाँ दस अपने जैसे डायबिटीज के बारे में यह सोचला कि ब्लड प्रेशर पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर है जैसे कि एक वजह ना खुद उम्र वजह से कहाँ छेद, जैसे कि उम्र छः हिसाब में 8 साल।

0: درسان arteriosclerosis der yani kon درسان ngati mi mot rasit tonzer shante shindo ya
1: Kasi.
0: tsokhle chana pressure po kyunki the wall pe ko pressure po fok pan khos high tension do high shish shish
1: Kasi.
0: de alawa ko le ko le ka khachi ke alag alag bhi mading ata primary ya secondary hypertension de kuch cheezon chin ki achi ki wajah se ngati blood pressure po gen lasun so for
1: Ana.
0: example achi ka kidney taklif utpan
1: Kasi.
0: kidney taklif utpan kyunki de afferent arteriole na अब वेन्यूल को नैनो कंस्ट्रक्शन जाने दें चिशत की बैक प्रेशर पो ज़्यादा फोगा या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वजह से का बाहर पेरिफेरल रेजिस्टेंस अच्छी यानी थकरी से जो खोने नुक खराक को नैन रेजिस्ट यो उत्पन्न खा प्रेशर ज़्यादा तामरों से टिश्यून साप पर खराक को लग चुके या दे अलावा खाची करके दी होत की लिवर इन शिकायत हो दोन सख सेकेंडरी आंच की वजह से का को ब्लड प्रेशर कुछ चीजों के सख टेस्ट वेस बने सख नॉर्मल है
1: कैसे
0: दो इन नंग खास ज्यादा प्रेशर लो से तुम आता दो एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी को कोई कॉज की वजह के सेकेंडरी कॉज में मगर फिर भी हाइपरटेंशन है
1: कैसे
0: तो लोग आता बेस्ट पर दी होत की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बा यानी चीजों को आता सातिर को गा इनो आते डुलजो आते जान जचा दोन सखन चेंज बना बिहेवियरल चेंज बना काफी हद तक असर हो फॉर एग्जांपल आदा अच्छी चेंज बा इंजन की ब्लड प्रेशर क्योंकि नाती खरा का नु नाती दी आ दुखे खरा का प्रेशर पे एनर्जी से पानी के चांस होते हैं जैसे नाती फॉर एग्जांपल दुखे जराया पाइप चेन छू
1: ओना प्रेशर
0: हां
1: का था
0: चांस
1: छूता
0: तेज
1: था
0: हो
1: ना
0: या चांस पे तदे नुकसान तो के लिए ज्यादा प्रेशर प्लस ना छूता
1: कैसे
0: कभी कभी नस पर फटाई चांस
1: ओना ना
0: अगर गोइन सोंस ना फॉर एग्जांपल ब्रेन हेमरेज से चांस
1: कैसे
0: या दे अलावा स्निंखा अगर दैट्स अ प्रेशर के वो उसकी खेन बखेन सेन गक्सियत पर अगर हो लिपिड गक्सियत पर या फैट गक्सियत पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो पर दैट्स अ स्कून इतने चीज चेंज में खो एम आई या हार्ट अटैक में दैट्स अ चांस चेंज
1: कैसे
0: या कि कोई किडनी फेलियर छ या कोई मिगे देना कंसर्न जो पनागन फटाई छ एकदम से लॉस ऑफ विजन दैट्स ऑफ कंडीशन या रेटिनल हेमरेज सर का इशू इन सेशन तो कोशिश पर दी कि गाचिस पो फॉर एग्जांपल जैसे आता है ब्लड प्रेशर इन पयु मतलब छा या पयु लेके कम
1: कैसे
0: बचो
1: कैसे
0: पर जे नो दें वजह पर दी कि आता है सॉल्ट कम बना आते दे नो रास जर कन दे हार्मोन का दे कि किडनी ने दो एक्टिवेट कम छ छ तो उस कम छन आता ल ब्लड प्रेशर पो कम छ छ
1: कैसे
0: छा कम बचे दे अलावा स्नो मोम ना कम बचे क्योंकि खरा नाली नो गाताला दिसोखला गाख में गाख छुपे फेला दोन संग आतां काम बस या दे अलावा की गाताला ब्रिस्क वॉक जरूरत की एक्सरसाइज बहुत जरूरत डुल जरूरत आधा आधा घंटा रे डुल जरूरत की तेज आमी डुल चो बंग में ता छ नॉर्मल डुल छ
1: कैसे
0: दे अलावा बॉडी के हम वेट पर कम बचे तो ओवरऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये फैक्टर को लेके ज्यादा प्ले इंपॉर्टेंट दो ना स्मोकिंग में बचा हर जगह दे
1: कैसे
0: चार पांच पो हर जगह यहाँ फायदा था चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो हाइपर टेंशन हो या आपका थायराइड का इशू हो या दे अलावा कोई दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जो फॉर एग्जांपल कैंसर छो बीमारी से यहाँ या चोला अगर कंट्रोल बना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई बना काफ़ी हद तक रोल होता है
1: कैसे सर दरे गा दु सुखी दु पकी दी गा ता जे तम ब्लड प्रेशर सो खचीज मत पोस दचो अच्छा डॉक्टर री कमन अच्छा डॉक्टर समान तो समान पोतंग मन का तो समान पो नश न्यो छालो पर न्यो छना रुस पा कमजोर छालो पिलान छालो जें चिक समान पो मना थु म मिंदु या छावा कम बसे न दु दु दि समान थु जस पोतम छिक इंपोर्टेंट इन या डॉक्टर इज खा समान तंग जो समान पो थु म मा थु म जा नु दे रुस पा कमजोर छालो न्यो छालो जें चिक दु
0: दो अति देर जाश दे गलत सोच पुदी हुई जिसका काफ़ी नुकसान आ चेन क्योंकि गार डॉक्टर पो समान पुतामी वजह पुदी हो चिनकी खोला पता हो कि अगर पहला लगाता कोशिश पो बाद नाम इसी दिस बीमारी ने इतना कि खुरी लेवल चिलता पे अगर जैसे
1: कैसा
0: फॉर
1: ना
0: एग्जांपल डायबिटीज से लगाता प्री डायबिटीज भी कंडीशन चुन प्री डायबिटिक मतलब यार नॉर्मल हमें डायबिटीज हमें खुश किल चाहिए पर आता दिन खो कोशिश बात की लाइफ स्टाइल मॉडिफाई बस से खो हम बैक टू द नॉर्मल क्यों में
1: कैसे
0: या चलो हाइपर टेंशन आता प्री हाइपर टेंसिव स्टेज हो या अर्ली स्टेज अर्ली हाइपर टेंसिव स्टेज हो तो दे कंडीशन को नाता दी कोशिश पो बात की समान पुतामा पद से दुन ला खो लाइफ स्टाइल का अगर ज्ञान ना मिलना तो दो खुरा चुन अगर वो डॉक्टर इज बिस की बाई दिस मंथ पुजार कुछ तो फॉर एग्जाम्पल खुआ हाइपर टेंसिव स्टेज यूँ से 140 क्रॉस से या
1: कैसे
0: 130 गेनल सोंसे दो दो से डॉक्टर को निज देखना तामत की जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ता का चिकित्सा से ना कि वाकई में खुली दी बीमार दी हाइपरटेंशन पे हूं उसको मैंने एक

0: Ella bo ma khachi gando kin jin ko fashion designing ya shok dok to
1: Ona
0: is
1: ona.
0: course ke through yente do ba yan
1: Do
0: chok
1: ba yan
0: yo
1: chi
0: ta
1: ha
0: men
1: bo
0: ha
1: ona
0: to se
1: bakshis.
0: agar to nga dusre men ki doctor wal ton ki
1: Talent pora an chi yu den de yo na khachi yong chin de
0: in de ha
1: pora ona.
0: to jese ki pru ga chek teacher dance yo su entrepreneur dance yo su
1: Ona.
0: researcher dance yo tha
1: Pura pura.
0: to su psychology su journalist dance yo to har us field me so jahan pe yara interest ro tha
1: Ona ona.
0: kyunki dusre men ki koi field kam nahi koi zyada nahi hai har
1: Ona
0: field ke
1: ona.
0: hum respect karte hai
1: Bakshis.
0: to career wahi choose bosa jo जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट हो जिसमें आपको पैशन हो या हाँ जहाँ सीरियस मेहनत बसे और मेहनत चिकबा से यरा दे चीज पर बसनी हो ना यरा लगन चाह सचिंदे मेहनत चाह बसनी हो चिंदे हाँ तो मेहनत पर बना दिया ना फल चिक थोबे रिजल्ट चिक थोबे रिजल्ट थोबे ना यंग आती कोमा फायदा छे दे सदर में था तो एक और बात की गता दी गवर्नमेंट इधर तो स्कीम सा गता तंग से दुख प्रोवाइड बस दुख दिन इन इन स्कीमों का गता पूरा पूरा फायदा उठाई बार गोशिन हाँ ऐसा पता ना लेन में कारगिलो दुख जरे हाँ कारगिलो दुख पर गोशिन धरे अंगस ऑल इंडिया रेडियो कारगिल तरफ से आज दी मैसेज पम फुल अप्रोच अप्रोच पर गोशा मैम या जब बन गचा एज अ रिसर्चर यूनिवर्सिटी का यो दिची का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट टू लेनो दिया ता अर्थ पर दुख तो खा मगर अगर गते एनरोलमेंट का तो स्पर ता ना यूनिवर्सिटी जरे कॉलेज ना एनरोलमेंट दी जो नंबर पर दुख दे दिन ब दिन कम छिन छिन
1: कम
0: तो खा तो दो गति मुआशरे फिलाना माने एक नुकसान छ सो खा अगर चलो फ्रू काचे गते दो डिमोटिवेट बस में के ता फिस्ता मा सो खा अगर तो गाती गज फ्रून न दिया गुजारिश हम भाई नोट की अगर जो 12 पास आउट सो सो गाती कॉलेज ने का एनरोलमेंट बो शी देना जो सला कॉलेज स्टूडेंट लंग गुजारिश जो की यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम जो स्किल्स जो था दोनों ना हिस्सा ले
1: शी
0: तो एज अ गाचा यूनिवर्सिटी दरे स्कॉलर छना गाता छते अफसोस रिछे नु की हां गाती सुशी से सिंधु पाए की हां दरे हां मैं मानती हूं की गाती यूनिवर्सिटी यंग यूनिवर्सिटी की ना चोक चोक शुरू सों से था तो दिना ना एनरोल मेट्रिक बचा बाकी जो फ्रूल ला अगर ख्वाहिश जो फिस्ता छसनियो तो दो तो स्कॉलरशिप थ्रू नियंत्रण छा नियंत्रण जो बाकी चम चिक नाती अपकमिंग स्टूडेंट नो तो यंती ब्राइट फ्यूचर फिला गा जनता बहुत बहुत शुभकामनाएं तंगत की अंता आगे सों से सफल सों शी गंता यंती मौका में निकले शी बाकी गा जगह चिकयो ना हमेशा दू संबंध आ जाए कि कल को कुछ करके दिखा रहे तो अपने कारगिल के लिए ही कर रहे हैं दिलचस्प दो गाता संभ्या
1: पूरा कारगिल लद्दाख गचुगा गतांग दिया दो गियर गया शिक्षा में यंचे दो जरे प्रुम गांव में ओदे देने उमर को संभा हवो
0: बख्शिस
1: बख्शिस नो मो यार समाना फेस बाबा से मोस दी गतांग एआईसीटी स्कॉलरशिप स्कूल फेस बाबा से मोस देमा यो गती ग्यान खानु संग दी स्पेरानिक ना फन खेले नुग नो मो छना गतांग तुस पो इजिन तांग में दुग बु इंशाल्लाह यंग लुस पि स्पेरान गती यंग अचनो मोनी प्रोग्राम ने स्क्यो जु से क्यों से यंग लुस पि स्पेरान यंग कोन सु पंगा तेलेप चु गु जु Yaran oju tsering mo ya salam alaikum. Daksa sakpayantes institute Daksa sakpayantes travel research institute University of Ladakh research scholar Sakina Yasminikana ngati di scholarship iskola fespa base program chingyon nyanen yotpin rdeang mayo tenta sang di dikana fan kheleno dia tiso nambo ding achinamoni program po thamathon inshallah nan melusna yang yongmi achinamoni program ni strolika yantang na thuk thuk de man pong achang saga ezin chaz de bazat ya ju khoda nar sangmani fakhre

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने का किया ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान मौसमी सूरत हाल से पैदा हुए हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक उमूर का लिया जायजा। सरकार इख्तराइयत और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए पुरअज़्म, वजीर आला। और नशरियात का कौमी दिन आज। खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार हालिया पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा चलाने और उन्हें सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी। एक सोशल मीडिया पैगाम में वजीर अजम ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज सरकार की अव्वली तरजीह है और तालिबे इल्मों के मफादात के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वजीर अजम के दफ्तर में वजीर मामलों का डॉ जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तालिब इल्मों से सरकार के साथ बातचीत करने की दावत दी है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान एहतजाज कर रहे तालिब इल्मों के नुमाइंदों को बातचीत के लिए चार बार पेशकश की गई। उन्होंने तालिब इल्मों को यकीन दिलाया कि बातचीत में वजीर सेहत जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के नतीजे में मुतासिर रही। राज्यसभा में हिजब इख्तलाफ के मेम्बरान ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज करते हुए वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मेम्बरान को यकीन दिलाया कि सरकार दोनों ऐवानों में किसी भी मामले पर बहस करने के लिए तैयार है, तहम इस पर कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। वजीर की यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई पहले से फिर 3 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी की गई। लोकसभा में इसी मामले पर ओपोजिशन के शोरगुल के नतीजे में ऐवान की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों, सिक्योरिटी एजेंसियों और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के साथ एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद पैदा हुए हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से मौजूदा सूरतहाल का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि यात्रा के पहले 20 दिनों में 3,91,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम महकमों और एजेंसियों को आपस में करीबी तालमेल बनाए रखने की हिदायत देते हुए कहा कि यात्रा की बहाली का इनेसार मौसम की बेहतरी पर है। मीटिंग में फौज के शुमाली कमान के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलीन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्राकर भारती और दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इख्तराइयत और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के सरकार के अज़्म का इआदा किया है। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज ईडीआई के एहतमाम से मुनाकिदा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों के इख्तराई ख्यालात को अमली शक्ल देने में उन्हें हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जा रही है।
1: People who are looking at practical problems that we face today and coming up with practical, realistic solutions that they believe can be implemented. Small things. Why do our pipes freeze in winter? And if our pipes freeze in winter, what can we do about them? Outside in the exhibition, you'll find these youngsters who have connected a water tank to plastic pipes with 2 sensors connected to a temperature sensor. The moment the temperature drops below minus, first the water from the tank will stop, then the lower tap will open and drain the pipe so that there's no water. As they rightly said, no water, nothing to freeze. So small, innovative ideas.
0: वज्राला ने वहां पर कई तालिब इल्मों की जानिब से लगाए गए एंटरप्रेन्योरशिप स्टालों का मुआयना किया और कई अहल सनदकारों में सीड फंडिंग सपोर्ट की रकम तकसीम की। नायब वज्राला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मौसमी तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए तवील मुद्दती डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज राजौरी में हालिया सैलाब के बाद पैदा हुए हालात और राहत कार्य के काम का जायजा लिया। उन्होंने जरूरी खिदमात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत दी। दरियासां जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने पूंछ जिले में मेंढर इलाके का दौरा करके बारिशों और सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस इलाके में जारी बाजाबदकारी के काम में सुरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने मुतासरीन को सरकार की जानिब से हर मुमकिन मुआवनत फराहम

0: करने का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि मसनूई जहानत में इंतजामी अमल की वसत को बढ़ावा देने और शफाफियत को मजीद मुअसर बनाने की सलाहियत मौजूद है। ये बात उन्होंने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कही, जिसमें जम्मू कश्मीर के इंतजामी अमल में मसनूई जहानत को इस्तेमाल किए जाने से मुतालिक पेशरफ का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ करीबी राबता बनाए रखने की हिदायत दी, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्बत और फायदेमंद इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत अदा किया है। अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट्स में एलजी ने उन्हें अजीम मुजाहिदीन आजादी करार देते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज नशरियात का कौमी दिन है। आज ही के दिन 1927 में मुल्क में रेडियो की नशरियात का आगाज हुआ था। नशरियात की शुरुआत मुंबई स्टेशन से एक निजी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए हुई थी। इस दिन के मुनासिबत से कई तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें समाज में मुस्बत तब्दीली लाने में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अहम रोल को उजागर किया जा रहा है। आज के दिन की इफादत के बारे में आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा,
1: ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बुनियादी मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। और अब तो जाविये बदल गए, सियासी हलके और दूसरे समाजी हलके, मजहबी और बाकी जो तमाम तर सोसाइटी है, हर तरह की सोसाइटी को कैटर करना, उन तक पहुंचना, उन तक प्रोग्राम हम पहुंचाना अब ब्रॉडकास्टिंग का खासा रहा है। नशरियात का आगाज लिमिटेड पैमाने पे हुआ था, फौजियों को पैगाम रसानी के लिए काम आए उस पर शुरू हुआ। ऑनलाइन रेडियो पहले ही कायम हुआ था, 47 के बाद उसके जाल बिछ गया, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में स्टेशन बनने लगे। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले जम्मू में स्टेशन कायम हुआ और उसके बाद 48 में यहाँ श्रीनगर में पोलो ग्राउंड में एक मेकशिफ्ट स्टेशन कायम किया गया और नशरियात का आगाज हुआ। उसके बाद नई बिल्डिंग बन गई और नई बिल्डिंग में जो आजकल है वहां पे शिफ्ट हुआ ब्रॉडकास्टिंग। खुदा करे जोर कलम और ज्यादा नशरियात में और तरक्की हो।
0: ये है मारूफ ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल के तासुरात।
2: कौमी यौम नशरियात के मौके पर तमाम नशरियाती इदारों, सहाफियों, ब्रॉडकास्टरों और मीडिया से वाबस्ता अफराद को दिल्ली मुबारकबाद। नशरियात का शोबा अवाम तक बर वक्त मुस्तनद और जिम्मेदाराना मालूमात पहुंचाने, कौमी यकजहती को फरोग देने और मुआशरे में बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। आइए इस दिन के मौके पर सच्चाई, गैर जानिबदारी और अवामी खिदमत के आला उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की तजदीद करें। कौमी यौम नशरियात हिंद मुबारक।
0: आज के दिन के मुनासिबत से प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले कई दहाइयों के दौरान ब्रॉडकास्टिंग का अमल रेडियो से टेलीविजन और टेलीविजन से डिजिटल मीडिया के इर्तिका से गुजरा है। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने इस सारे अमल के दौरान अपनी पहचान कायम रखी है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने सामईन तक वक्त के तकाजों के ऐन मुताबिक जदीद तरीन प्रोग्राम पहुंचाती रहेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस संधू शर्मा की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर जुडिशियल एकेडमी के एहतमाम से आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से वाबस्ता प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट्स के लिए सलाहियत साजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। एकेडमी के श्रीनगर कैंपस में मुनाकिद इस प्रोग्राम में कश्मीर सूबे से वाबस्ता मजिस्ट्रेट्स ने जाती तौर जम्मू सूबे के मजिस्ट्रेट्स ने वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के मुख्य पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर में सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी आलिया पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां सालाना उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर अंद्राबी ने आस्थानी आलिया पर जारी तजदीद काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की जरूरत पर जोर दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सर शर्मा ने ऐवान में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी के बारे में एक अनस्टार्ड सवाल उठाया। उन्होंने दिशा स्कीम से मुतलिक सरकार की जायजा रिपोर्ट से मुतलिक तफसीली रिपोर्ट तलब की। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली में हिजबी इख्तलाफ के कायद सुनील शर्मा ने कहा कि वजीर अला उमर अब्दुल्ला बकौल उनके साफ हुक्मरानी फराहम करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस बारे में कम बोलना चाहिए। نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ کچھ مفاد پرست سیاسی جماعتوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ان کا استحصال کیا ہے۔ سری نگر میں آج پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نئی دلی میں

मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है।

आती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं।
केंद्रीय

जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन

योजना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी

0: गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वान्ह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद में हुई आज की कार्रवाई का खुलासा आप आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडियम 684 किलोहर्ट्ज, मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज, FM 1.25 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी कारगिल से पहुंच रही है। शब के 8:15 हुए हैं। पेश करना थे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए

जय हिंद। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों की खिदमत में हमारा प्यार भरा आदाब। फौजी भाइयों को आज हम चंद फिल्मी और गैर फिल्मी कव्वाले सुनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले पेश है अल्लाह रखा फिल्म से कव्वाली आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और साथियों की।

अल्लाह रखा फिल्म से कबल आप समाप्त कर रहे थे आवाज़ें थी मोहम्मद अज़ीज़ आशा भोसले और साथियों की। प्रोग्राम की अगली पेशकश गैर फिल्मी कवाली आवाज़ें हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान और साथियों की।

प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कच्चे धागे फिल्म से कवाली, आवाज़ें हैं नुसरत फतेह अली खान और साथियों की। कवाली से पहले एक छोटा सा वक्फा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ!
4: फर्जी ऑफर से होशियार।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले

0: प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
2: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
4: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
2: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
1: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगांव में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने वाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the News at 9. The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the

0: आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहानात के वकार को मजरूह करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत न रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
1: वो बहाना ढूंढ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में जो मुल्क तक अपना कंडीशन है मांग है पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोटासिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोरडान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वफ्द की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हम मनसब जनाब डॉन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तरजीह तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शोबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तवाज़ों को फरोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इकतदी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिल तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्कद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनअती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अल-अक़वामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली, माहौल के लिए साजगार तवानाई की मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत की गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगा

0: गीगावाट थी जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने उड़ीसा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हुसूलियाबी भारत के दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे का एक अहम संग मील है। जनाब सिंह ने कहा कि जमीन से फजा में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल तैयार करने की सलाहियत सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मिसाइल निजाम की मदद से भारत की दरामदी इन्हिसारी में कमी आएगी और मुल्क के फजाई दिफाई निजाम की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। गुजरात में शदीद बारिश जारी है जिसकी वजह से खासतौर पर जनूबी गुजरात खत्ते के बहुत से हिस्से जेरे आब आ गए हैं। मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। कस्बे और गांव जेरे आब आ गए हैं जबकि रेल और सड़क नकलो हमल मुतासर हुई है। वलसाड़, सूरत और नवसारी समेत बारिश से मुतासर अजला में बचाव और राहत की कार्रवाइयां मिशन मोड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुनूबी गुजरात में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गांधीनगर के रियासती हंगामी ऑपरेशन के मरकज में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वजीर आला ने बारिश से मुतासर अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासर और नशेबी इलाकों में राहत और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों को तेज करने को अव्वलीन तरजीह दें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तूफानी बारिश ने गुजरात के बहुत से हिस्सों में मामूल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जुनूबी और वस्ती अजला इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। नौसारी के खेड़गांव में 16 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि सूरत के अमरपाड़ा में आज शाम तक 15 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वलसाड़, भरूच और खेड़ा जिलों में भी शदीद बारिश की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। नौसारी में वजीर हर्ष संघवी ने आला हुकाम के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त के कंट्रोल रूम में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। औरंगा और दमन गंगा जैसे तुगयानी पजीर दरियाओं ने हुकाम को बहुत सी शाहराहें बंद करने पर मजबूर कर दिया। गोलवाड़ और उम्बेर गांवों के दरमियान एक पुल पर सतह आब खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद आज मगरबी रेलवे की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके बाइस बहुत सी ट्रेनों को कलील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहत और बचाव की टीमें जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं जिसमें NDRF का अमला फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ है। अहमदाबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया जिसके बाइस मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और रियासत में शदीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने शदीद बारिश के मद्देनजर राहत और बचाव की कार्रवाईयों और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए मरकज की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शदीद बारिश की सूरत हाल में राहत और बचाव की कार्रवाईयों से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी बात की। मरकजी वजीर दाखिला ने रियासत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। सिक्किम के नामची जिले में समरडंग में NHPC तीस्ता के स्टेज 6 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग में फंसे तमाम 25 लाशों को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 4 दिन से जारी बचाव कार्रवाई अपने अख्तिताम को पहुंची। सिक्किम सरकार और कई मरकजी एजेंसियां इन बचाव कार्रवाईयों में शामिल थीं। सिक्किम सरकार ने भी इस अलमनाक हादसे की वजूहत का पता लगाने के लिए 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी से 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। आज जम्मू कश्मीर में फलियन मंडल प्राबंदी के नजदीक दरियाए तवी में अचानक तुगयानी के सबब वहां फंसे 2 अफराद जम्मू पुलिस और आफात से निपटने के रियासती दस्ते SDRF ने तेजी से और करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई की और उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड शहर के ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया जबकि बाकी 2

खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं। भारत दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 126 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। इस सीरीज का दूसरा मैच इतवार के रोज इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदु किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोशो डॉन के दरमियान बुखारेस्ट में वफ्द की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरक गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।